0: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए।
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
2: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
1: ऑफ कोर्स इट्स द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड. ग्रैंड, बोल्ड एंड हार्ड टू मिस.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
2: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
3: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए.
4: This message was brought to you by FM 100 Pakistan.

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
3: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100. बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए. लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM247365.
4: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है. तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिले सजा जुर्म है. लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें. ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें. ये मुफादे आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है.
5: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है. और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है. ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराहकुनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है. इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है. अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदामात जरूर उठाएं. जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें. अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें. अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स. डिजिटल तहफ्फुज का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है. बर वक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं. डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. Emergency Rescue 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
4: 11.9% 11.9%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट. सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. शराइत और ज़वाबित लागू है.
4: 11.99%
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
7: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
8: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
9: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
10: खैर ही खैर है. HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
9: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
10: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
12: शराइत ज़वाबित लागू है.
13: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का. एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें. मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें. तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा.
8: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली.
9: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
10: खैर ही खैर है. HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
9: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
10: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
12: शराइत ज़वाबित लागू है.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
14: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
15: शौकत खानम कराची की तकनीक.
16: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
17: जहां 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
18: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
19: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
20: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
21: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है.
20: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
21: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
20: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
21: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks। अब समझ आया, सब क्यों देख रहे थे?
20: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
22: This program is brought to you by HBL Freedom Account, जहाँ खाब वहाँ HBL
23: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
24: एंड सर सब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
25: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
26: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
27: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
28: FM 100
29: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
30: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे समीहा. उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे मंडे मॉर्निंग को भी कुछ दिल नहीं चाहता और खासतौर पर पता नहीं अचानक से इतनी गर्मी क्यों शुरू हो गई है, समझ से बाहर है. बंदा कहता है कि यार अब एसी का टाइम खत्म, लेकिन अब एसी की भी जरूरत वापस से आ गई है, अल्लाह खैर करे. एनीवेज, और आपने सुबह का आगाज करना चाहिए अल्लाह ताला के जिक्र से, अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा शुक्र से भी कि उसने आपको एक और दिन दिया है कुछ अच्छा कुछ खास करने के लिए. और हम अपने शो का आगाज करते हैं हमेशा जैसे कि आप जानते ही होंगे कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. आइए हम पढ़ रहे हैं सूरह अनकबूत का तर्जुमा आयत नंबर 11 से. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. और काफिरों ने मुसलमानों से कहा, हमारी राह पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों में से कुछ भी ना उठाएंगे, बेशक वो झूठे हैं और बेशक जरूर अपने बोझ उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ उठाएंगे और जरूर उनसे कयामत के दिन उनके बहतानों के बारे में पूछा जाएगा. तो हमने आयत नंबर 11 से आयत नंबर 12 तक पढ़ा है. और कुरान शरीफ जब भी पढ़े, भले आप थोड़ा पढ़े, समझ के पढ़े, क्योंकि ये इस किताब का हक है कि इसको इसके बारे में जितनी गौर व फिक्र की जाए, जितना इसके बारे में समझा जाए जाना जाए उतना ही कम है. और यही आपकी जिंदगी को रोशन करती है, बेहतर बनाती है. राइट, और हम आपको बता दें कि आज का हमारा टॉपिक क्या है. और आज का हमारा टॉपिक ये है दोस्तों कि मतलब आप जो है अपनी शख्सियत से, अपनी मतलब अपने आप से कौन सी जो है क्या कहते हैं कमजोरी को दूर करना चाहते हैं. तो ये हमारा आज का टॉपिक है. आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे एट आरजे समीहा मैसेज कर सकते हैं. इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का. और अभी हमारा टाइम है किसका भला हमारा टाइम है ये पक्के दोस्तों का और मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स का, जो इस वक्त स्कूल जा रहे होते हैं. और मैं देख रही थी कि बिल्कुल उनको मजा नहीं आ रहा होता, अजीब सा उनका मूड होता है, अजीब से सो रहे होते हैं सुबह के वक्त. और सुबह के वक्त एनर्जाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अचानक सुबह के वक्त पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है, एज सून एज वी गेट अप वी फील दैट ओ माई गॉड वी गोना गेट लेट. ये देख कितना भी चीजें सारी तैयार कर लो और हर बार तो यार लेट हो गए. और हर एक का मूड जैसे कि ऑफ हो रहा होता है, हर एक ऐसा लगता है कि लॉस्ट बैटल लड़ रहा है कि यार स्कूल पहुंचना है. और तो ये जो सीरियसनेस है ना, ये हमने खुद ही डाली हुई है. पहले स्कूल जाने की टेंशन, फिर उसके बाद कॉलेज, उसके बाद खैर कॉलेज को तो खैर टाइमिंग रिलैक्स होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के, लेकिन फिर ऑफिस जाने की टेंशन. तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा टेक इट ईजी और कोशिश ये करें कि खुद भी अपना मूड अच्छा रखें और आसपास के लोगों का भी मूड अच्छा रखें, स्पेशली ऑन अ मंडे मॉर्निंग. राइट, आज जो है हमारी प्यारे प्यारे बच्चों को हम जो है वो डेडिकेट करेंगे पक्के दोस्तों का सॉन्ग. और वो प्यारे बच्चे हैं अरमान, अहमद फराज, दाशान, यजदान, इब्राहिम, अबीहा, आयान, इलाया, अहमद अली, मोहम्मद अली, आयजा, आयरा, उनीब, शेर अली, सिद्वा रहीम, इकरा, जोहा, उमर, अहमद, सैयदा उम्मे हानी, सैयदा हमदा, सैयद उबैद रजा, हरीम फहद, अब्दुल हन्ना, नबीहा, आजर फनान, जैन शोएब, सुदेश, आमना, हमाद, वाइज, हानिया, हुरिया, अहमद, नबीहा, नबीरा, सुभान एंड समीहा एंड फातिमा, उमैर, हसन, शहरियार, मूसा, ईसा एंड अरमिश, अलिशबा, रिजवी, नूरुलैन, उमर, शामीर, अब्दुल मुगनी, महरीन, मोहम्मद अहमद, अनाविया, अब्दुल हादी, अब्दुल वासी, अब्दुल रहमान, आसद एंड उर्वा, रूहान एंड रायान, अनाविया, अब्रीज, हमदान एंड अजलान, अलीशा, जिया, आयरा, जिया, फसी, मुर्तजा, दनीन एंड रायहा, चलानी, नुसरत एंड जाफियार, जुरेज एंड रायद, कबीर, मिना एंड मशाल. और आज हमारे पास एक जो है वो स्पेशल डेडिकेशन भी है. राइट, और वो स्पेशल डेडिकेशन जो है वो किसके लिए है, वो मुझे एक्चुअली उनकी जो क्या कहते हैं उनकी खाला ने ना मुझे आई थिंक 2 महीने पहले से बोला हुआ था, 2 या 3 महीने पहले से कि सुदेश की बर्थडे होगी आज. सुदेश की हैप्पी बर्थडे है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. और आपकी आई थिंक गुड़िया आपी ने, और जिनका असल नाम नायला है, तो गुड़िया आपी ने मुझे बहुत पहले से बोला हुआ था कि जब जो है सुदेश की बर्थडे होगी तो प्लीज आपने उसे रेडियो पे विश करना है. और सो सुदेश, हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. और आप बहुत लकी हो कि इतने सारे लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहते हैं. सो यू आर वेरी लकी, हैव अ ग्रेट डे एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड आरजे समीहा. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज फॉर यू. और बाय द वे, ये सब लोग
लोग जानते हैं कि ये जो गाना है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट गाना है। बल्कि मुझे लाहौर से भी लोग जो है ना वो फोन करके कि बच्चे जो है ना ये गाने सुना रहे होते हैं, यहां से भी सुना रहे होते हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस ट्रैक। और वो ट्रैक में रुक जाए रुक जाए रुक जाए, हाँ जी, तो ये ट्रैक है ऑफकोर्स इज पीला पीला। सो सुदेश, दिस सॉन्ग इज स्पेशली फॉर यू टूडे बाय पक्के दोस्त।

कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मुर्गी के चूजे सूरज मक्खन लड्डू और मुझ में क्या चीज कॉमन है? बिल्कुल सही, हम सब एक ही रंग के हैं, पीला।

0: 6, 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: 11.9% 11.9%
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
3: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
1: 11.99%।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: 100 FM।
7: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डाली डाली,
8: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
9: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
8: HBL जरिए बैंक की वजह से?
9: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
8: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
10: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
11: शराइत जवाबत लागू है।
12: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
13: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
12: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
13: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
12: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
13: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ, इसमें 8 seats का option है।
12: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
13: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट। This program is brought to you by HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।
14: And स्वागत खानम कराची की तकदीर।
15: And सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
16: And फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
15: And
17: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
15: And
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
0: Us on facebook.com/fm247365
6: fm247365.
0: Health update is brought to you by FM 100 Pakistan.
18: जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और वक्त हुआ है कि हम आपको बताएं कुछ हेल्थ के बारे में, हेल्थ अपडेट के बारे में। और ये जो अपडेट है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई विजिटेड अ हॉस्पिटल यू नो रिसेंटली, और उधर जो है ना ये हैंड हाइजीन का उन्होंने ना बिल्कुल एक लीफलेट बनाया हुआ था, एंड आई थॉट वाज लाइक रियली गुड एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान जो है ना उसको अपनी जो बीमारियां बहुत सारी फैलती हैं वो आपके हाथों से फैलती हैं, जर्म्स स्पेशली अगर किसी को कंटेजियस बीमारी है तो हाथ धोना और हाथ जो है क्या कहते हैं हमेशा अपने साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पता होना चाहिए स्पेशली बच्चों को कि कब उनको हाथ धोने के, बच्चों को अक्सर आदत नहीं होती हाथ धोने की, और ये आदतें अच्छी वाली जो है वो बचपन से ही पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ जरूर धोएं और मतलब स्पेशली जो है ना, जो लोग खाना बनाते भी हैं तो उनको भी चाहिए कि वो हाथ धोएं और खाना बनाने के बाद भी हाथ धोएं, क्योंकि वो फिर आपके नेल्स के अंदर भी चीजें चली जाती हैं और फिर आपके हाथों से जी लहसुन और पत्नी किस किस की आ रही होती है. लेकिन ये कि हाथ जो है जरूर धोना चाहिए, भले आप खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं. स्पेशली खाना खाने से पहले भी बच्चों को आदत है. आई नो कि मेरी लिसनर्स प्यारे बच्चे जो पक्के दोस्त गैंग है वो बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं और वो जरूर हाथ धोते हैं अपने, लेकिन ये बच्चों के बारे में बताना चाहिए कि स्कूल के अंदर भी आपने जो है ना वो लंच टाइम के अंदर हाथ धोने हैं और उसके बाद हाथ जो है बाद में खाना खाने के बाद भी धोने. ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जर्म्स पे ट्रांसफर हो जाते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि आपके पास वो इतने सारे बच्चे एक साथ तो खैर हाथ नहीं धो सकते, कहीं कहीं है कि वॉश बेसिन होते हैं प्रॉपर, यू नो दे हैव लंच टाइम्स एंड दे पीपल यू नो वॉश दे हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर. कहीं नहीं भी होता तो यू कैन यूज योर वाटर बॉटल एंड यू नो जस्ट वॉश इट, या फिर हैंड सैनिटाइजर्स लोग रखते हैं. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो है ना लोग हाथ धोएं, उसके बाद आफ्टर यूजिंग वॉशरूम इसके बाद भी हाथ धोने बहुत जरूरी है. अगर आपको खांसी आती है, छींक आती है, तब आपको हाथ धोने बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप पेट्स को एनिमल्स को हाथ लगाते हो तो भी बहुत जरूरी है कि जी अपने एनिमल्स को, कुछ लोगों के पेट्स होते हैं एनिमल्स डॉग्स या कैट्स, उसके बाद हाथ लगाया फिर वही कोई अम्मी ने बिस्किट दे दिया तो वही खा लिया, तो ऐसा नहीं है.

Alright, you're listening to the song How You Like Me Now. और कभी कभी इंसान ना अपने आप को ही लाइक नहीं करता अगर उसको लगता है कि उसके अंदर जो है ये कमजोरी है. लेकिन कमजोरी जब आइडेंटिफाई हो जाए तो मेरे ख्याल से उसको दूर करने की तो कोशिश करनी ही चाहिए. और आप लोगों के पैगामात हैं, चलते हैं आप लोगों के पैगामात की तरफ, मैसेजेस की तरफ. एनजी का मैसेज आया हुआ. एनजी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गॉड मेड मी जस्ट राइट.

0: माई स्ट्रेंथ मोर देन मेकअप फॉर इट. ओहो, कहने के अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छा बनाया. कमजोरियां हैं मेरे अंदर भी, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ जो है वो उसको मेकअप कर लेती हूँ. राइट, सो अच्छी बात है, यू आर कॉन्फिडेंट. और हाँ, इंसान में खूबियां ज्यादा और खामियां कम होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से इंसान को अपने ऊपर सख्त नजर रखनी चाहिए कि वो ये भी, यू नो आई एम ऑल्सो लाइक दैट, परफेक्शन को इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन हमेशा हमारी पर्सनालिटी में कोई ऐसा फ्लॉ होता है कहीं ना कहीं, जो हमें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होने देता. क्योंकि सच बात है, इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन है. कहीं इंसान की ईगो, अना, गुरूर, ये सारी चीजें इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती और रिलेशनशिप को भी खराब करती हैं. सो यस, तो ये आई लव यू मैसेज एनजीक. और उसके अलावा हमारे पास याया हमीद का मैसेज भी आया हुआ है, राणा इमरान राजपूत का भी मैसेज आ गया है. और जो राणा इमरान राजपूत, प्लीज टॉपिक के हवाले से भी कुछ कहें. और राइट, और नजीक खोसो, आपसे भी मैं यही कहूंगी. याया हमीद कह रहे हैं, कभी पैसे नहीं बचाए, इफ यू डोंट सेव मनी देन यू विल बी इन ट्रबल. पर मेरी आदत है, जो कमाया खर्च कर दिया, कभी पैसा सेव नहीं किया. और तो आई नो, ये मेरा साथ भी ऐसा, हमने कभी, मैंने सोचा ही नहीं था कि पैसे बचाता कौन है, गरीब लोग पैसे बचाते हैं. बाद में पता चला कि अमीर होने के लिए इंसान को सिर्फ पैसे कमाने नहीं होते, पैसे बचाने भी होते हैं. और बल्कि पैसे सिर्फ बचाने भी नहीं होते, पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है किसी ना किसी अच्छी जगह पे. क्योंकि जाहिर है, पैसे के वैल्यू स्पेशली इन पाकिस्तान में तो ऐसे गिर रही है जैसे क्या ही कोई बात हो. तो वो आपने जो है ना, उसको इन्वेस्ट करने हैं. और फिर मसला ये है, पाकिस्तान के इन्वेस्ट भी कहाँ करें, ये एक अलग बहस है. लेकिन हाँ, पैसे बचाने, पैसे जोड़ने और फिर उन पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना, आगे के बारे में सोचना कि आज पैसा है, आज इनफ्लो हो रहा है. और लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहे, हमेशा आपकी सेहत ऐसी रहे. तो फिर आप बुरे वक्त के लिए अच्छे वक्त में सेविंग्स करें, फजूल खर्ची ना करें कि जाके जी भी पैसा आया. लोगों ने अक्सर ये करते हैं कि जी बड़े शो ऑफ करना होता है, जी गाड़ी फॉरन ले ली. और खैर, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे वी आर बिग ऑन शोइंग ऑफ रियली. सो मतलब जैसे पैसा आया, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया. और वो चीजें, मतलब वो एसेट्स नहीं होते, वो आपके एसेट्स वक्त के साथ साथ जो है वो उनकी वैल्यू कम हो रही होती है. तो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़े. और पैसे बचाएं, समझदार लोग पैसे बचाते हैं, कमेटियां डालते हैं. कमेटी डालने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए, बड़ा डिसिप्लिन चाहिए. ये भी है. लेकिन ऑफकोर्स पैसा बचाना, या हमीद थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट एंड बींग ऑनेस्ट. तो खैर, आप लोग भी मुझसे ऑनेस्ट हो सकते हैं, हमें मैसेज करें और हमें बताएं कि अपने आपने अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, टाइप करें के एच आई स्पेस आपका नाम, आपका मैसेज उसे भेज देंगे 3636 पर. तो आपने हमें ये बताना है कि आप की ऐसी कौन सी शख्सियत में कमजोरी है जो आपको लगता है कि आपको दूर करनी चाहिए, और दूर करनी चाहिए थी बहुत पहले. राइट, तो वक्त वाई ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. आप लोग मुझे मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या एट आज समिया इंस्टाग्राम पे.
1: इमरजेंसी कभी बता कर नहीं आती.
2: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है, जो जदीद निजाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का, जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे सिंध.
4: 11.9% 11.9%
5: ओ भाई, क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और जवाबित लागू है.
4: 11.99%
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
8: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की

0: लगातार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोआबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
1: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
2: ओ खैर है बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
3: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
2: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
3: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
2: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
4: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
5: शरायत ज़वाबत लागू है।
6: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
7: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
8: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
9: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है।
8: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
8: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
9: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
8: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
12: शौकत खानम कराची की तकदीर।
13: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
14: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
15: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
16: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
10: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL
12: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
2: एंड
6: सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
2: एंड
17: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
2: एंड
18: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं
2: एंड
19: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
20: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khwab, Wahan HBL.
1: And Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
2: And
3: Sarsabz Nitro Falls Ko Laga, Aur Jeet Ta Ja.
2: And
4: Phoenix Laga Aur Bhul Ja, Phoenix Laga Aur Bhul Ja.
2: And
5: Tabal Family Mixture Line, Umrah Par Jaye.
2: And
6: Purani Gaadi Chhodo, Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo, Karibi HBL Branch Chalo Ya Apply Karo Online.
7: Pakistan Humse Hai. हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अजमी इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
8: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: Like us on facebook.com/fm247365.
10: FM 247 365.
11: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
12: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
11: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता।
13: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
14: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
11: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
13: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
14: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
13: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
11: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
14: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
11: आइए वेट से आगे का सोचें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: 11.99%, 11.99%.
2: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
3: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
1: 11.99%।
4: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
7: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
8: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
7: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
8: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
7: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
8: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
7: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
5: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: किसने कहा था पैसे बचा।

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहां खाब वहां HBL
1: and शौकत खानम कराची की तकलीफ
2: and सरसब्ज नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा
3: and फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
2: And
4: Tabal Family Mixture लाएं, उमराह पर जाएं
2: And
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन
6: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
7: FM247365
8: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samiha.

0: एनर्जी वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
1: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
2: जहां पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: कपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
7: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: एंड शौकत खानम, कराची की तकदीर।
8: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा।
9: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
6: एंड कपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
10: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
11: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: Paul. You're hearing the sun. Across the nation.
1: This is FM 100. FM 100. 100. 100. 100. 100.
2: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
4: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती
5: हूँ? कंट्रोल फॉर एम 210210 मूव करेंगे.
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
6: 11.9% 11.9%
7: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट. सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
8: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. शरायतों से वाबित लागू है.
6: 11.99%
9: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
10: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
11: शौकत खानम कराची की तकदीर.
12: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
13: झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
14: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
15: खैर ही खैर है. HBL जरई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
14: HBL जरई बैंक की वजह से?
15: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
14: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
15: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें.
16: शराइत और ज़वाबित लागू है.
17: 100 FM.
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
0: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.
9: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.

0: location for maximum music.
1: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
4: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99%।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
7: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
8: किसने कहा था

0: This program is brought to you by
1: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
1: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
2: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे।
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: 11.9% 11.9%
4: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
3: 11.99%
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
8: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
9: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा, बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
10: मजीद मालूमात के लिए VR टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप VR के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रابطہ कर सकते हैं।
11: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
6: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
12: नेपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 0211111827 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। नेपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमरा पर जाएं।
13: This program is brought to you by
10: VR Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
13: FM 24/7/365

0: AM. This time check is brought to you by
1: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
3: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
2: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
5: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
6: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
7: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रابطہ कर सकते हैं.
0: This program is brought to you by
7: VR Telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: Your location for maximum music.
1: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तना जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: This program is brought to you by
3: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवजा तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
1: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
2: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे।
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो। ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है।
4: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा। बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी।
5: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं। आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी रब्ता कर सकते हैं।
6: This program is brought to you by
5: via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
6: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. This program was brought to you by
1: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
2: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
3: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: कंट्रोल फॉर एम 210210 मूव करेंगे.
2: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
5: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद ये आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
6: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
1: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320275849 पर भी राब्ता कर सकते हैं.
7: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना.

0: 365 FM 247 365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatma Khan, and you are listening to FM 100 Pakistan. How are you all? Kya hal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? हाय आज कराची में है बहुत ही जबरदस्त किस्म की गर्मी. तो इस गर्मी को आप कैसे बना रहे हैं? बेजारी के साथ, परेशानी के साथ, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये जो कराची में ये चुपती और तपती हुई गर्मी आई है ना, तो ये हमें डाइजेस्ट हो नहीं पा रही है किसी भी सूरत. लेकिन इस गर्मी के पीछे भी एक अदद राज मौजूद है जिसकी वजह से ये गर्मी आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रही है. तो वो क्या राज है, इस पर भी बात करेंगे. आपका छुट्टी का दिन कैसे गुजरा, इस पर भी बात करेंगे. आज का सवाल क्या है, ये भी होगा. लेकिन सबसे पहले जो एक चीज बाकी है वो है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज. तो चले जी करते हैं प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज, जो कि होता है एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. तो लेट्स

जी तो ब्रेक को तो शामिल कर लिया, मैंने कहा जी जब हम वापस आ रहे हैं तो साथ ही साथ एक अदर ट्रैक के साथ आ जाते हैं ताकि अपनी बातों के सिलसिले को बढ़ाएं आगे। तो बिल्कुल जी आगे आ चुके हैं हम लोग, और इसी के साथ साथ आज का हमारा जो इंटरेस्टिंग सा सवाल है जो कि हम आपसे पूछेंगे, तो वो ये है कि क्या आप ही ये मानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है या नहीं, आपका क्या मानना है? बिकॉज ये एक बहुत मशहूर कोट है जो कि हम सारी जिंदगी से सुनते आ रहे हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और हम सब इस पर बिलीव भी करते हैं एंड दिस इज द मोस्ट फेमस कोट। और हकीकतन तौर पर हम अपने फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए बहुत एफर्ट भी कर रहे होते हैं, और ये एफर्ट हम तब भी कर रहे होते हैं जब हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं या किसी से कोई मुलाकात कर रहे होते हैं या कोई अपनी प्रेजेंटेशन लेके जा रहे होते हैं। ऑल्दो हर सूरत हाल में हम अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को मेंटेन करने के लिए वी वर्क सो हार्ड फॉर दैट बिकॉज वी बिलीव इन इट कि भाई फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि जो पहला इम्प्रेशन होता है वही इंसान का आखिरी इम्प्रेशन होता है। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और नो यू डोंट बिलीव इन दिस? तो क्या सूरत हाल है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं 3636 पर मैसेज कर या फिर आरजे फातिमा खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं, क्योंकि इंटरेस्टिंग सा सवाल है और आज हम आप ही की जबानी इस सवाल को जानेंगे कि आपको क्या लगता है कि इस बात में कितनी हकीकत है। क्या आप भी ये मानते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है? अगर हाँ तो हमें मैसेज करें और कमेंट करें और जल्दी से बताएं कि आपकी नजर में सही जवाब क्या है। तो जी हम तो कर रहे हैं आपकी मैसेजेस का इंतजार, और ये है हमारा आज का सवाल, और ये सवाल हम दोहराते रहेंगे, साथ ही साथ मौसम पर भी बात करते हैं कि मौसम की क्या ताजतरीन सूरत हाल है, क्या कहती है, बहुत सारे म्यूजिक भी है, सवाल भी है, बहुत सारी बातें भी हैं। लेकिन जब भी मैं सवाल पूछती हूँ तो सोचने का मौका अपने लिसनर्स को जरूर देती हूँ कि आप सोचो और हमें बताएं। तो जी टेक योर टाइम, थिंक एंड टेल अस, तो सोचो और हमें बताएं। जब तक हम चलते हैं ट्रैक की जानिब और आते हैं वापस आपके जवाब के साथ।

0: जी, तो आपने सोचा कि आपकी नजर में सही जवाब क्या है? कि जी हम फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है या नहीं, आप इस बात को नहीं मानते, तो आप क्या मानते हैं हमें जरूर बताएं। इसी के साथ साथ भाई सवाल तो हमने आपको बता दिया कि आज प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का टॉपिक यही है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, आप भी इसी बात को मानते हैं या फिर नहीं। तो ये तो है जी आज का हमारा टॉपिक, लेकिन उसी के साथ साथ जरा नजर डालते हैं कराची के मौसम पर। तो सबसे पहले आपको दर्जा हरारत बताते हैं, इस वक्त कराची का दर्जा हरारत कितना है, और इस वक्त जो है वो 12:30 तकरीबन होने वाले, यानी कि 12:27। तो कुछ देर बाद इसमें मजीद इजाफा भी होगा, विच इज ऑब्वियस बिकॉज इस वक्त कराची का जो टेम्परेचर है वो है 39 एंड रियल फील्स लाइक इज 44, और ये आज की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली 45-46 है, क्योंकि कल भी कराची का टेम्परेचर इतना ही बढ़ा था। और आज सितंबर की 14 तारीख है, तो क्या ताज़तरीन खबर है इसके हवाले से आप लोगों तक आगाही फराम करते हैं। तो चंद रोज कबल खलीजी बंगाल में एक हवा का कम दबाव तशखीस पाया था, जो साजगार माहौलियाती हालात के तहत मुसलसल मगरब की जानेब बढ़ रहा है और भारतीय रियासत गुजरात में दाखिल हो रहा है। इस हवा के कम दबाव के जेर असर गुज़श्ता रोज सिंध से जनूबी मशरकी इलाकों के बायस मामलात पर गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि कराची में इसके असरात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सिर्फ बादल देखे गए हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी सैड। नहीं, मजीद खबर आपको बताते हैं। ताजा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक हवा का कम दबाव के दस्तूर मगरब की जनूबी पेशकदमी के तहत ये सुनने में आ रहा है कि निचले हिस्से सतह पर भरपूर हवाएं कराची को मुतासर कर सकती हैं। आज कराची का दिन का आगाज गर्म है, लेकिन दर्जा हरारत में कमी की पेशनगोई भी मौजूद है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कुछ एरिया कराची का भी कवरेज होगा और इसके तहत कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई है तो कम, लेकिन चंद इलाके ऐसे हैं जो कि सिस्टम को मुतासर करेंगे, जिसके जिन इलाकों के हवाले से भी आपको आगाही फराम करते हैं कि मुमकिन तौर पर गुलशन हदीद, सरजानी टाउन, गुलशन मेमार, लांडी, भैरिया टाउन, डीएचएस सिटी, नॉर्थ कराची, मलीर एयरपोर्ट और गुलिस्तान जौहर शामिल है, जहां पर इन इलाकों में हल्की बारिश देखी जा सकती है होपफुली, लेकिन इस वक्त कराची में से धूप भी देखी जा सकती है, और इसके अलावा तेज बारिश के इम्कान मौजूद हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। और अगर इस सिस्टम के तहत कराची में बारिश नहीं हुई तो अगले कई टाइम तक अभी कराची में मजीद बारिश नहीं होगी, यानी कि 2-2.5 महीने और मजीद गुजरेंगे, और अगर कोई सर्दी में सिस्टम आया और टकराया तो होगी, लेकिन इसके जेर असर कराची के चंद आध इलाकों में बारिश की पेशनगोई मौजूद है, जिसके हवाले से मैंने आपको आगाही फराहम की है। और कहीं इन इलाकों में भी यही है कि कहीं बहुत तेज बारिश होगी और कहीं सिर्फ बादल नजर आएंगे, और इन्हीं में कहीं जो है वो बूंदाबांदी होगी, यानी कि आप ये देखें कि इतना बड़ा शहर है हमारा कराची कि ये सिस्टम पूरे कराची को मुतासर नहीं कर रहा है, हालांकि सिंध के चंद इलाकों में तेज बारिश की पेशनगोई मौजूद है इस सिस्टम के जेर असर, लेकिन फिलहाल कराची में सिर्फ धूप है, शदीद किस्म की गर्मी है, और ये है मौसम की काफी सैड न्यूज जो हमने आपसे की है शेयर। तो फिलहाल मौसम की सूरत हाल ये है, इस वक्त महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 44 है, और इसी के साथ ब्रेक की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
1: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती,
2: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
3: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे।
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है, जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का, जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे सिंध।
4: अपनी ताकत को पहचानो और

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: शौकत खानम कराची की
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: You're in tune with the lunchtime special on the big one. FM 100.

ऑल राइट जी, सो वी आर बैक, हम आ चुके हैं वापस और आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान। और अब जबकि हम वापस आ ही चुके हैं तो क्यों ना आपको एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के बारे में कुछ बताएं कि जी हां, इसको खुलवाने के हैं कितने सारे फवायद। तो चलें जी, सवाले से आप लोगों तक करते हैं आगाही फरहाम। तो कारोबार को दें स्मार्ट बैंकिंग की आजादी एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ, मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक और जदीद ऑनलाइन बैंकिंग, ताकि आप ज्यादा तवज्जो दें अपने बिजनेस पर। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, बैंकिंग होनी चाहिए आसान। एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने रोजमर्रा कारोबारी लेन देन को बनाए मजीद साहिल और तेज। हर बिजनेस ओनर की जरूरत एक ऐसा अकाउंट जो दे सहूलत भी और आजादी भी। आज ही एचबीएल फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और फायदे उठाएं मुफ्त बैंकिंग सहूलत का। कारोबारी अदायगी हो या रोजमर्रा ट्रांजैक्शन, एचबीएल फ्रीडम अकाउंट के साथ हर काम होगा अब ज्यादा आसान, ज्यादा स्मार्ट। अपने बिजनेस को दें डिजिटल बैंकिंग का पावर अप। पाकिस्तान की बेहतरीन मोबाइल ऐप और मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग के साथ सिर्फ एचबीएल फ्रीडम अकाउंट। कामयाब कारोबार की पहचान है स्मार्ट फैसले। आज ही एचबीएल फ्रीडम अकाउंट अपनाएं और बैंकिंग की झंझट को करें अलविदा। बिजनेस चलाएं एतमाद के साथ। ये एक बड़ी जरूरी चीज है कि भाई बिजनेस जब हम चला रहे होते हैं तो एतमाद की बड़ी जरूरत होती है। तो बिजनेस चलाएं एतमाद के साथ साथ एचबीएल फ्रीडम अकाउंट देता है आपको वो सहूलियात जो हर कारोबार को दरकार हैं। तो चला रहे हैं आप भी बिजनेस अकाउंट अपना, तो एचबीएल फ्रीडम अकाउंट खुलवाएं और इन सारी सहूलत को आप हासिल कर सकते हैं। तो मैंने कहा चैलेंज ही आप लोगों तक की आगाही फराहम करते हैं।

ओके, सो वी आर बैक. हम वापस आ चुके हैं और इसी के साथ साथ भाई आज है 14th of September. सो जरा देखते हैं कि आज कौन कौन से दिन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं. तो भाई आज नेशनल क्रीम फिल्ड डोनट डे मनाया जा रहा है. ओके, वो डोनट जो सेंटरी फिल्ड होते हैं और वो लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं. उमूमन तौर पर इसकी फिलिंग जो है वो कस्टर्ड की होती है या क्रीम की होती है, बट मोस्टली आई थिंक कस्टर्ड की होती है. तो डोनट के पसंदीदा लोगों के लिए आज ये दिन मनाया जा रहा है. ये वो डोनट है जो कि सेंट्रली फिल्ड होता है और ये क्रीम फिलिंग वाला भी लोगों को अच्छा लगता है, कस्टर्ड फिलिंग वाला भी, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है और बहुत हैवी भी लगता है. लेकिन खैर भाई ये तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं. तो आज इस दिन को मनाया जा रहा है और इसी के साथ साथ शेफ एप्रिसिएशन वीक भी सेलिब्रेट किया जा रहा है जो कि 14 सितंबर टिल 18 सितंबर तक मनाया जाएगा कि शेफ को अप्रिसिएट करें और ये वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है. और आई मस्ट से कि अगर शेफ की जहां तक बात है, जो एक्चुअली में शेफ्स हैं वो तो अप्रिसिएशन डिजर्व करते ही हैं, लेकिन हमारे घर में भी शेफ्स मौजूद हैं और ये वो शेफ्स हैं जो आपकी खवातीन हैं, जो आपके लिए बड़ा ही मजे का खाना बनाती हैं. गैस की बंदिश होने के बावजूद भी बेचारियां एज सून एज पॉसिबल आपके लिए खाना प्रिपेयर करती हैं, तो अप्रिसिएशन तो वो डिजर्व करती हैं. तो उन्हें भी जरूर अप्रिशिएट करें क्योंकि अप्रिशिएट करने से जो काम है वो बड़ा अच्छा और बेहतर होता है. तो भाई ये अप्रिसिएशन वीक है तो पूरा वीक नहीं, अब पूरा वीक तो मेरे ख्याल से लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक आध दफा जरूर जो है वो अप्रिशिएट करें ताकि वो भी और मजे से मजीद काम करें. अच्छा भाई आज तो वैसे खास दिन यही एक मनाया जा रहा है. इसी के साथ साथ अगर कल के दिन पर थोड़ी नजर डालें और देखें कि कौन से दिन मनाए जा रहे हैं, तो कल इंटरनेशनल चॉकलेट डे मनाया जा रहा था यानी कि 13th of September को. सो चॉकलेट के शौकीन लोगों के लिए है. और उसी के साथ साथ है नेशनल किड टेक ओवर द किचन डे. ओ माई गॉड, ये तो द मोस्ट टॉर्चरस डे होगा खवातीन के लिए, यानी कि भाई बच्चे जो हैं वो किचन पर करेंगे कब्जा और करेंगे काम. तो मेरे ख्याल से खवातीन ये चीज तो बेयर कर ही नहीं सकती कि उनकी किचन पर जो है वो बच्चे कब्जा कर लें, बिकॉज बच्चे अगर किचन में घुसेंगे तो जाहिर है भाई बहुत सारी बर्बादी भी करेंगे. और किचन जो है वो खवातीन का एक ऑब्सेशन होता है कि इसे कोई बर्बाद करे या कोई इसमें घुस के कोई भी काम करे ना, तो ये खवातीन बिल्कुल बेयर नहीं कर पाती. तो एक ये दिन भी मनाया जा रहा था कल के दिन. और इसी के साथ साथ नेशनल पीनट डे, छुट्टी वाले दिन ज्यादा अच्छे दिन मनाए जा रहे हैं. और भाई मूंगफली भी लोगों की बड़ी फेवरेट होती है. पीनट बटर आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत महंगा मिलता है, लेकिन उसे बनाना भी बहुत आसान है. अगर आप चाहें तो उसे घर पे भी आसानी बना सकते हैं. और अभी वैसे भी अभी तो खैर बड़ी गर्मी है, लेकिन अनकरीबी सर्दियां भी आ रही हैं, तो मूंगफलियां ज्यादा शौक से खाई जाती हैं. और वो जो मूंगफली के ठेले जब गलियों से गुजरते हैं इतना अच्छा लगता है, और एक वो जो एक खुशबू एक अरोमा में हम लोग आ जाते हैं विंटर्स में, सो दैट इज सो नाइस. तो मेरे ख्याल से मूंगफली एक ऐसी चीज है जो कि लोगों की बड़ी ही ज्यादा फेवरेट होती है. तो मूंगफली से कोई जुड़ी याद है आपकी, या आपको मूंगफली पसंद है या नहीं, ये भी आप हमें बता सकते हैं. तो भाई बहुत सारे दिनों को हमने इकट्ठे ही डिस्कस कर लिया और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि अब हमें एक अदर ट्रैक की जानेब भी जाना चाहिए. तो ट्रैक की जानेब चलते हैं, फिर वापस आपके आपके मजीद मैसेजेस को शामिल करते हैं कि किसकी क्या राय है और कौन क्या खा रहा है, क्या पका रहा है. तो आते हैं वापस इस ट्रैक के बाद.

0: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
1: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
2: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे।
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 11 खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है। किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: शौकतखानम कराची की तकलीफ।
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
8: जी हाँ,
9: किया गया।

भी मानता। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हमारे लिसनर्स की काफी मिक्स रिव्यू आ रहे हैं कि कोई मानता भी और कोई नहीं भी मानता। शिराज कहते हैं कि कभी मानता हूँ, कभी इस बात को नहीं मानता कि ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है मतलब कैसा होता है? कभी आप अग्री करते हैं और कभी डिसअग्री करते हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम किसी से बड़ी तवक्को लगा लेते हैं लेकिन वो हमारी तवक्कोआत के बिल्कुल बरक्स निकलता है, जब वक्त गुजारते हैं तो पता चलता है। तो मेरा मानना तो ये है कि किसी को भी हम बहुत जल्दी जो है वो जज नहीं कर सकते। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत जल्दी बन जाता है। रिसर्च में देखा गया है कि लोग बहुत शॉर्ट इंटरेक्शन से हटकर कुछ सेकंड में दूसरे पर्सन के बारे में जो है वो जजमेंट बना लेते हैं। ये तो होता है लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। रिसर्च के मुताबिक कुछ स्नैप्स जजमेंट सरप्राइजिंगली एक्यूरेट होते हैं लेकिन कुछ बिल्कुल गलत होते हैं। तो भाई ये सारी चीजें रिसर्च बेस्ड हैं। रिसर्च भी ये बात कहती है कि हम सोच ही रहे होते हैं कि एक्चुअली में ऐसा है लेकिन हर इंसान वैसे का वैसा नहीं रहता, उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा एक्यूरेट नहीं होता रिसर्च के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना ज्यादा टाइम किसी पर्सन को ऑब्जर्व करने में हम लगाते हैं, ये इम्प्रेस की एक्यूरेंसी जनरली इम्प्रूव हो सकती है। एक स्टडी में लेटर

होता है, ऐसे ही होता है, मतलब कैसा होता है? कभी आप अग्री करते हैं और कभी डिसएग्री करते हैं, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम किसी से बड़ी तवक्को लगा लेते हैं लेकिन वो हमारी तवक्कोआत के बिल्कुल बरक्स निकलता है, जब वक्त गुजारते हैं तो पता चलता है। तो मेरा मानना तो ये है कि किसी को भी हम बहुत जल्दी जो है वो जज नहीं कर सकते, फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत जल्दी बन जाता है। रिसर्च में देखा गया है कि लोग बहुत शॉर्ट इंटरेक्शन से हटकर कुछ सेकंड में दूसरे पर्सन के बारे में जो है वो जजमेंट बना लेते हैं, ये तो होता है, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। रिसर्च के मुताबिक कुछ स्नैप्स जजमेंट सरप्राइजिंगली एक्यूरेट होते हैं लेकिन कुछ बिल्कुल गलत होते हैं। तो भाई ये सारी चीजें रिसर्च बेस्ड है, रिसर्च भी ये बात कहती है कि हम सोच ही रहे होते हैं कि एक्चुअली में ऐसा है, लेकिन हर इंसान वैसे का वैसा नहीं रहता, उसमें चेंजेस आते हैं, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन हमेशा एक्यूरेट नहीं होता रिसर्च के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना ज्यादा टाइम किसी पर्सन को ऑब्जर्व करने में हम लगाते हैं, ये इम्प्रेस की एक्यूरेंसी जनरली इम्प्रूव हो सकती है। एक स्टडी में लेटर जो करते हैं कहते हैं आपकी बात सुन रहे हैं तो ये भी सही लग रही है, लेकिन पहली मुलाकात जरूरी है कि अच्छी हो। हाँ अच्छी तो हो, बिल्कुल हो, लेकिन वही मुलाकात जो है वो आखिरी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि पहले हम ये सोचते हैं, पहले हम उसके बाद हमें कुछ और मिलता है, तो ये है। लेकिन हम फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए एफर्ट बहुत करते हैं। तो क्योंकि वक्त तेज से गुजर रहा है तो चलें जी एक और ट्रैक के जाने चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के।

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम कराची की
2: तकलीफ. अभी राजा उस्ताद आ जाएगा, फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा.
3: हमारे माशरे में जिनसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते, बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं. लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया. अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाए. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
4: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
5: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है. This public service message is brought to you by FM 100.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: suffer harm. Eradicate 021-111-8272.
1: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
2: Shaukat Khanam, Karachi Ki Takneek.
3: Tapal family mixture ke saath har safar khas. Umrah likhe 021-111-8272-5 par WhatsApp karein. Pack ke andar maujood code batayein aur lucky draw mein shamil ho jayein. Tapal family mixture laayein, umrah par jayein.
1: Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM247365.
5: Let's celebrate
1: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
6: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
1: 100 FM।
7: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल

0: Coast 110 FM, your location for maximum music.
1: बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिसम में एक झटका सा महसूस होता है और मैं अपने आप को कहता हूँ कि यार धूप की रखा, उस वक्त मेरा सेंस

0: your location for maximum music.
1: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
3: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
4: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है. आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पे कॉल करें. वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365.
6: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
7: Only music, no RJ talk.
6: This is FM.

0: 100's time check. It's 4 p.m.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
0: FM 247 365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान.
4: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
1: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते हैं?
2: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे।
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: तफाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास। उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तफाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
4: facebook.com/fm247365 FM247365

तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह कमाल मेरा।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, बहरीन, across the nation.
4: This is FM 100.
0: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती।
5: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
6: कंट्रोल फ्रेम 210-210 मूव करेंगे।
0: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है, जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का, जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122, आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे सिंध।
7: 11.9% 11.9%
8: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
9: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99%
10: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
12: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
13: ओ खैर बरकते बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
14: खैर ही खैर है, HBL जरिए बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
13: HBL जरिए बैंक की वजह से?
14: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के जरिए कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
13: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
15: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL जरिए बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, जरिए आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें।
16: शराइत और ज़वाबित लागू है।

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
2: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
4: And Tabal family mixture laye, umrah par jaye.
5: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: It's 5:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
8: 11.9% 11.9%
9: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
10: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99% HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
12: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
13: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
14: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
13: बाहर से तो grand है, अंदर भी premium feel आ रही है और space भी काफी है।
14: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
13: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
14: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
13: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
14: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
15: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली।
16: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
17: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
16: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
17: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
16: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
18: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें।
19: शराइत और ज़वाबित लागू है।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: एंड सर सब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ता जा।
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: एंड विया टेलीहेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
4: एंड तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
7: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
20: FM 247365

दुनिया से बेखबर जो कहना था कहने दे आंसू ये बहने दे यार बोले दे खबर बोल खोल दे हम जान भी दे देंगे तेरे कहने पे वक्त पूरा ना हो बेसबर मेरे लफ्ज़ तुझ पे कर्ज़ ये दर्द

चारों तरफ मचिकल बली ने लगा कहानी मेरी सिर्फ दर्द भरी हाजिर मुझे बर्तरी होने लगी हड़बड़ी खुद की कमाई पहनी गड़ी वो भी बर्बरी अभी मजबूर नहीं लेकिन चली लग बड़ी आके मेरे पैर पड़ी जिंदगी थी सैर बरी सीखे हम गिर के चाहिए सबके खैर बड़ी गहरे समंदर हम लेके चले

कहां निकल चुका खुद की तलाश में, आते ख्याल खुद को रोक ले दकाश में, करके तमाशे तेरा दिल को दिलासे, जबकि जानता हूँ खुद को मैं अच्छी तरह से, कैसे हट जाता पीछे मैं अपनी जगह से, कैसे छोड़ देता जीता मैं जिसकी वजह से।

0: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
1: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
2: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है.
1: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
0: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
1: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है.
0: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
1: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
5: शौकत खानम कराची की तकलीफ.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
7: अपनी ताकत को पहचानो और मेरी तरह हर 3 महीने के बाद यह आसान टीका लो. ये एक आसान और सेफ माने हमल का तरीका है.
8: ना बार बार क्लिनिक जाने के झंझट और ना ज्यादा खर्चा. बस एक दफा लेडी हेल्थ वर्कर से ट्रेनिंग लो और फिर 3 महीने तक की सेहत भरी छुट्टी.
9: मजीद मालूमात के लिए वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं. आप वीआर के व्हाट्सएप नंबर 0320-2758-492 पर भी राब्ता कर सकते हैं.
10: किसने कहा

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहां खाब वहां HBL.
1: And सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीतता जा.
2: And Phoenix लगा और भूल जा. Phoenix लगा और भूल जा.
3: And via telehealth पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं.
4: And Tabal Family Mixture लाएं, उमराह पर जाएं.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365.
7: Back to back, only music, no RJ talk.
8: Only music, no.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
3: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
4: कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे.
2: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
5: 11.9% 11.9%
6: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट. सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. शरायत और ज़वाबित लागू है.
5: 11.99%
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकते
3: हैं? कंट्रोल फ्रेम 210210 मूव करेंगे.
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निजाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
4: 11.9% 11.9%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट. सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए.
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. शरायत और ज़वाबित लागू है.
4: 11.99%
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
7: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा.
8: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
9: ओ खैर है बरकत है, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
10: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
9: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
10: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
9: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
11: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रابطہ करें.
12: शरायत ज़वाबित लागू है.
13: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
14: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
15: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
16: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
17: जहां पांच दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
18: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए. इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना.
19: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं.
20: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
21: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है.
12: और स्पेस भी काफी है.
20: एग्जैक्टली. Palisade Calligraphy इज अ ट्रू 7-seater विद 3 यूजेबल रोज, कैप्टन सीट्स एंड अ ड्यूल पेन सनरूफ फॉर अ प्रीमियम एक्सपीरियंस.
12: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
20: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 seats का ऑप्शन है.
12: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
20: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर nearest Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहाँ खाब वहाँ HBL
1: एंड सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा
2: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
3: एंड वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं
4: एंड तबाल फैमिली मिक्सचर लाएं उमराह पर जाएं
5: Like us on facebook.com/FM247365
6: FM247365 FM100
7: 31 साल FM100 आपकी आवाज अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान
8: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान पाकिस्तान
9: Across the nation, there is only 100 FM.

0: Your location for maximum music.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: 11.9%, 11.9%.
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
4: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
2: 11.99%।
6: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
7: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: सब मुड़-मुड़ के देख रहे हैं।
9: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
10: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
10: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
9: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart ऑर्डर कर देता हूँ। इसमें 8 सीट्स का ऑप्शन है।
10: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
9: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
11: एंड सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीत ताजा।
12: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
13: एंड वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
14: एंड टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं।
15: FM 24/7 365.
16: Across the nation, there is only 100 FM.

0: AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: And Sir Sabs Nitro Falls ko laga aur jeet ta ja.
2: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And VR Tele Health par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
4: And Tabal Family Mixture laye, umrah par jaye.
5: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
6: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
7: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे.
5: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मुअस्सर मदद फराहम कर रहा है. हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है. ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है. Emergency Rescue 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
8: 11.99% 11.99%
9: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
10: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट. सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए.
11: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है. शराइत और ज़वाबित लागू है.
8: 11.99%
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
12: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
13: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली.
14: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है.
15: खैर ही खैर है. HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है.
14: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
15: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला.
14: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
16: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज. मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से राब्ता करें.
17: शराइत और ज़वाबित लागू है.
18: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
19: शौकत खानम, कराची की तकदीर.
20: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट.
21: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
22: जहां 5 दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. 5 दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
4: तपाल फैमिली मिक्सचर के साथ हर सफर खास. उमरा लिखे 02111182725 पर व्हाट्सएप करें, पैक के अंदर मौजूद कोड बताएं और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तपाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उमराह पर जाएं.
23: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है. किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैज कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैज कैश है ना।

0: Bus bus bus breksha. Lamun ta bar sasta?
1: Au kana. Tau au. Tau au. Eta lara taiat kaka.
2: Oh god, look at your face.
0: Oho, lumra bar.
3: Very very decent. No, I appreciate. Very decent.
1: Stay tuned.
4: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
5: 11.9% 11.9%
6: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए।
7: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
5: 11.99%
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
4: This program is brought to you by HBL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरयालात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत।
7: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
4: facebook.com/fm247365
10: Today's hit music,

0: This program is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Zari Yalat aur Maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: And purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
2: नशा न परेशानियां खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। पातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 100.

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: 11.9% 11.9%
3: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
4: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
2: 11.99%।
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
6: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: 100 FM।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
10: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है, किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज, और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए। इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
11: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
12: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
13: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
12: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
13: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
12: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
14: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और मवेशी के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
7: शराइत और ज़वाबित लागू है।
9: 100 FM।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
0: This program is brought to you by
14: HBL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सरई आलात और मवेशियों के लिए भी कर्ज की आसान सहूलत।
4: एंड पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
7: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
16: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
15: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
17: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
16: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
15: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
17: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
16: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
17: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
15: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
16: और इस वजन की असल हकीकत को समझिए।
15: आइए ویٹ سے آگے کا سوچیں.
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے, لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا, سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا, یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں, خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. pta.txt محفوظ ہے, لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ, او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی, دھمکی, لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری, بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں, خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے. لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں, ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں, محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم, پی ٹی اے.
18: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
19: FM 24/7 365 24/7 365 24/7 24/7

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: 100 FM।
3: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
0: This program is brought to you by HBL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zari yalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
4: And purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. FM 100.
5: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: 100 FM।
2: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
3: This program is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
4: And purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
3: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجئے.
5: Happy station for a happy nation. This is FM 100.

0: music has identity. That is
1: FM 100.
2: It's 9 PM. This time check is brought to you by SBL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. This program was brought to you by SBL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
3: And purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
1: 100 FM।
5: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। पांच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
6: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हूँ, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए तरजीह दे। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
9: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
10: हमारी जिम्मेदारी है।
11: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: FM 247/365
2: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
13: This is your music.

वॉल्यूम माइक चेक 1 2 3 अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है, कैसे मिजाज है, तबीयत कैसी है? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे, फिट फाट होंगे। जनाब दिन है आज मंडे का और मंडे वाले दिन ओल्ड इज गोल्ड, पुराने पुराने गाने, कोशिश करता रहता हूँ कि हिट गानों के साथ साथ कुछ ऐसे गाने जो ज्यादा हिट नहीं हुए लेकिन होते अच्छे हैं वो भी हम ऑन एयर करें। और जनाब ये बताएं कि कैसा वक्त गुजर रहा है, गर्मी वर्मी ज्यादा तो नहीं लग रही यार? ये सर्दी की तरफ जाने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि वापस गर्मियों की तरफ रिवर्स गेयर, ऐसा है, मुझे लग रहा है या है वाकई? ड्राइव कर रहे हैं इत्मीनान सुकून के साथ, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। घर में है तो भी इत्मीनान सुकून तहम्मुल, और मैसेज करने का मूड हो रहा, दिल कर रहा है तो KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड कर देंगे 3636। क्या बातें करनी है ये आपने और मैंने मिलके सोचना है, और सोचते सोचते ही प्रोग्राम खत्म हो जाता है, ये सबसे अच्छी बात है शो की। कोई लेक्चर नहीं, किसी किस्म की कोई नसीहतें नहीं, पुराने गाने, यादें, तो जनाब आगाज करेंगे माला जी की खूबसूरत आवाज से।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
1: FM 100, where the vibes are proud.
2: This program is brought to you by
3: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
4: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी। एक समझदार माँ बनेगी। सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी। आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं। और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: लाइक अस ऑन
7: facebook.com/FM247365
8: एक्टिव यमी। तो सुनो यार,

है जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 आयाज अहमद के साथ। और साथ साथ मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं 3636 पर। अच्छा जनाब, सबसे पहले संजीदा जी वालेकुम अस्सलाम और वेलकम किया आपने। मौसम तब्दील हुआ है मगर गर्मी की तरफ, सितंबर दरअसल सितंबर है आज। क्या आपने काफिया मिलाए, वाह वाह वाह, गाना पसंद आ गया, बड़ी मेहरबानी जनाब। नखरे तो हैं गाने में और माला जी की आवाज तो क्या कहने। आज वैसे मैंने कोशिश की है कि माला जी की जो आवाज है वो ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा जी, हुमा सिद्दीकी आ गई, सलाम अयाज, ब्लैक एंड व्हाइट कॉलर भी आ गया। क्या खूबसूरत आवाज है माला जी की, जस्ट लाइक कोयल। ओए होए, ये बात तो खैर आपने सही की। अच्छा जी, सुम्बल सुम्बल भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, कैसे हैं आप? और सबको सलाम दुआ। इसके अलावा बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन कोई रास्ता भी तो निकले। यकीन करें, मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। सफेद पोश लोग जो है ना, ये मिडिल क्लास जो लोग हैं वो काफी परेशान है। अमीर आदमी मजे कर रहा है या बहुत ही गरीब मंगता भी मजे कर रहा है, फुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पेट्रोल महंगा है सस्ता है। और कह रही कि मुश्किल में पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए, ये तो मैं कहता रहता हूँ और अभी भी मैं कहूंगा। अल्लाह से उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। बहुत दुआएं आपने दी दी, चाची मिस्टर फारूक, रानी जी और बिलावल भाई को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और दुआएं। वालेकुम सलाम, जरी नूर के भी मैसेज आ गए हैं, सलाम वालेकुम सलाम, सबको सलाम कह दिया। डॉक्टर फकीर फ्रॉम मारीपुर हॉक्सबे रोड से, अरे सरकार हॉक्सबे याद दिला दिया आपने, ठंडी ठंडी हवाएं, समुद्र की सूरत हाल बताओ, डेंजरस तो नहीं है? गाने कहने एक से बढ़कर एक, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आगे भी सुने आप, पीर एम इलियास अयाज भाई दी ग्रेट, वेलकम, नाइस शो, आई लाइक इखलाक अहमद और नगीरा नूर। एक सॉन्ग प्ले कर दें जनाब, नगीरा नूर का सॉन्ग भी है मेरे पास, इखलाक अहमद साहब का भी सॉन्ग है, तो पहले सबसे पहले नैयरा नूर को शामिल करते हैं, वो मेरी भी बड़ी फेवरेट है। और जनाब मैसेज आप लोग करें कि एचआर स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

ये होते थे सॉन्ग भैया, सुनने में भी मजा आ रहा। और इसी तरह का एक ट्रैक बिल्कुल आप मुझे मैसेज करें, मैं शामिल करता हूँ। एक और इसी तरह का मेलोडियस ट्रैक मुझे याद आ गया है और वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ।

0: पुराने वक्तों में गाने जो दुखी बनाते थे ना, इतना दुख डाल देते थे, ऐसा लग रहा है जनाजा उठ गया, इतना दुख डाल दिया, आंसू निकलते निकलते रह गए मेरे तो। और मेरे ख्याल से मूड बना के गाते थे कि किसी तरीके से दुखी कोई वाकया, ये कुछ सोच के ये सिंगर गाता होगा, सचमुच में इतना दुख आ जाता। लेकिन जी अपने जमाने का हिट गाना है दोस्तों। अच्छा भाई, हमारे बड़े प्यारे से दो नवीद भाई भी सुन रहे हैं, राना रिजवान, पत्नी नाम में मैं बहुत माठा हूं, राजा साहब आए हैं, वैसे लगता कि लाहौर से आए हैं। राजा साहब की हाल है, तो आडा तुम ठीक हो, खैरियत से? हाय, दुखी गाना बैकग्राउंड में लगा दिया, एक मिनट में जरा चेंज करता हूं। जनाब, तो राजा साहब के लिए एक अच्छा सा गाना मैं थोड़ी सी देर में डेडिकेट करता हूं, लेकिन इस वक्त जो है ना, पीर एम इलियास स्वीट अयाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका, सरकार मोस्ट वेलकम। मुश्ताक बैंगल भाई बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हैं, रोज अव्वल की तरह मंडे का शो आज भी सुपर डुपर है, हमेशा कहते रहा, आपने मेरा मैसेज पहला गोल कर दिया। अबे थोड़ा सब्र कर ले यार, इतनी किस बात की जल्दी है तुझे मैंगल भाई, आराम से भेजा है तो थोड़ा टाइम दो ना, गाने वाने सब हम खत्म कर दें, मैंगल का मैसेज पढ़े, मैंगल का मैसेज आ गया है पीर वाले दिन, मैंगल ऐसे लग रहा है मंगल। अच्छा जरा मैंगल साहब कहने, जबरदस्त फयाज लाला मसूद राना के क्या कहने, वैसे मुश्ताक भाई आपके भी क्या कहने, जरा सा सबर अल्लाह ने नहीं दिया आपको, मैसेज किया है थोड़ा थोड़ा वेट करो, ऑटोमेटिक पे थोड़ी है, ऑटो पे चल रहा है, एकदम मैसेज किया दो मिनट में हम जवाब देना शुरू कर देंगे, गाना खत्म होगा तरीके से, फिर मैंगल साहब का नाम लेंगे प्यार से, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा जनाब, मुश्क लैला भी आ गई, मुश्क जी अस्सलाम अली कहने कह रही है, और क्या हाल है, अभी अभी सुनना स्टार्ट किया और तारीफ कर रहे हैं भी गानों की, संजू के लिए कोई भी सॉन्ग ठीक हो गया जनाब, संजू जी के लिए बिल्कुल। अच्छा जनाब, होमा जी कह रही है आयाज स्टार्टिंग बहुत जबरदस्त की, बस आप सुनते रहे, तसल्ली रखे आप, और जो आप कह रही है ना, वो गाने भी हर तरह के हैं भाई, हर तरह के सॉन्ग होते हैं, मिक्स मॉल चल रहा होता, क्या हाल है तुम्हारे, सत्तार दी ग्रेट हमारे प्यारे से इंजीनियर तशरीफ ला चुके हैं, और नदीम अंसारी पहले से मौजूद। अच्छा जनाब, 9:30 हो गया टाइम, राजा साहब कितने घूम रहे हो, खाने पीने की चीजें खिला रहा नवेद भाई के नहीं, जब तक आप खाने पीने की चीजें ढूंढे, एक मिनट की ब्रेक है बस, ये ब्रेक से वापस आया और राजा साहब आपके लिए अच्छा सा गाना।
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे, बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ, यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ, तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: 100 FM,
3: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है, और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग, अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से, जैज 5G।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: शौकत खानम, कराची की तकलीफ।
6: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
7: Active. Yummy.
8: Adorable. Seven.
9: Say I've got a crush on you.
10: Ye pyaar to suno yaar.

All right, जनाब, वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और राजा साहब आए हुए हैं. राजा साहब घूम रहे हैं नवेद भाई के साथ. तो राजा जी, गाना आप पे बनता तो नहीं है ये वाला, लेकिन वैसे मेरा दिल कर रहा है आपको मैं डेडिकेट कर दूं, और वो है कैसे. मैसेजेस करेंगे KHR स्पेस, टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर.

हुआ है जनाब, बिजली भरी है मेरे अंग में। आजकल बिजली का भी बड़ा मसला, कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही, जहां आ रही है तो फिर बिल इतना आ रहा है कि बंदा कह रहा है क्यों, ये मैंने क्या कर दिया। कैसा दिन ब दिन दौर जो है ना चेंज होता जा रहा है, मुश्किलात बढ़ती जानी है, या मेरा ख्याल है, मेरा वहम है, क्या है, हर आम आदमी परेशान नजर आ रहा है। बिल्कुल सही संजीदा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं बिल्कुल मूड खराब नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं। और मिसेस फारूक वालेकुम सलाम, इतनी सारी दुआएं देने का शुक्रिया। राजा साहब गाना पसंद आया कि नहीं? और मुश्क लैला कह रही है थैंक्स किंग, आप बहुत अच्छे हैं, आप भी बड़ी स्वीट हैं, ऐसी बात नहीं। मुश्ताक मंगल कैसे हो, बड़े दिनों बाद आयो, तो बस थोड़ा हौसला सबर रखा करो बस। मुश्ताक कह रहे हैं कि अयाज लाला आप वाकई एफएम के हीरो हीरो ना, किधर से मैं हीरो, मेरी तरफ से पुप्पा को कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दो। बिल्कुल पुप्पा को हम करेंगे सॉन्ग डेडिकेट, लेकिन इससे पहले मैं जरा ये गाना आप लोगों को सुनाता हूँ, आवाज रूना लैला की, और बड़ा पुराना गाना।

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे एफएम 100 और इतना प्यार इतनी मोहब्बतें मैसेजेस के थ्रू हम तक पहुंच रही हैं। बहुत शुक्रिया वैस भाई आपका, आपकी मोहब्बतों का। मंडे की शो की बहुत तारीफ कर दी, सब सुनने वालों को सलाम भी, वालेकुम सलाम। पीर एम इलियास का फिर मैसेज आ गया, सुपर शो फुल मार्क्स अयाज भाई, वेल डन। सरकार इतनी तारीफें कर रहे हैं, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। और कह रहे नाराज नहीं होना प्लीज, ए नैयर नूर जहां। मैंने लगा सरकार अभी तो शुरू हुआ ना प्रोग्राम, नहीं यार काफी टाइम गुजर गया है। नूर जहां के गाने हैं, ए नैयर का मैं नहीं कह सकता। इखलाक अहमद का गाना जो आपने कहा था वो एक मैंने रखा है, इखलाक अहमद का गाना मैं थोड़ी देर में प्ले करता हूँ।

आज ना वेलकम बैक सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस 3636 पर। अच्छा भाई, और इमरान मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं आज भाई ये जो स्कीम पेट्रोल की निकली है इसमें आपने भी रजिस्ट्रेशन कराई है कि नहीं। भाईजन मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे एक भाई हैं उन्होंने कराई है। उन्होंने कहा मेरे पास 660 सीसी की छोटी गाड़ी है तो मैं क्यों ना इससे फायदा उठाऊं। तो भाईजन उनका कोई ना कोई मसला जो है ना वो क्रिएट किए जा रहे हैं कि आपने डेट सही नहीं लिखी। हालांकि डेट सही लिखी थी, लेकिन ये था कि जरा पहले उन्होंने साल लिख दिया, बीच में उन्होंने वो मंथ और एंड में उन्होंने डेट लिख दी। उन्होंने कहा नहीं, डेट पहले, मंथ बीच में, ईयर बाद में। जब उन्होंने वो ये सब कुछ करके भेज दिया तो फिर उन्होंने कहा नहीं भाई, आपका जो फोन नंबर है ना वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो मसले दिए जाए। किसी का हो गया हो तो मुझे बताएं जरा मैसेज करके कि उनको कामयाबी मिल गई है। अलबत्ता यहाँ पे मैं दोस्तों को कह रहा हूँ यार कराओ यार, लेकिन इधर मसले इतने ना, क्योंकि मोटरसाइकिल मेरे नाम ही नहीं। बताओ, गवर्नमेंट भी बड़ी तेज है यार, ऐसी बीच में जो चीज डाली है, मेजोरिटी लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है। अपने नाम ही नहीं की किसी ने गाड़ी, कोई ओपन लेटर पे चला रहा है। तो इन सारी चीजों को मिला मलू के इन दी एंड फायदा किसका है? गवर्नमेंट का। हम लोग ऐसे ही चले जनाब इसी बात पर एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक और माला जी की फिर खूबसूरत आवाज़।

बात है जनाब, क्या बात, दुखी दिलों की झनकार चल रही है इस वक्त फुल टाइम। दुखी दुखी सॉन्ग, वाकई संजीदा आप बिल्कुल सही कह रही है। कह रही है आज जिसका दिल उदास है उनके लिए बेहतरीन शो है, मोहब्बत में सारा जहां जल गया। बस जल तो हमारी वैसी जाती है, कोई खुश किसी को खुश देख ले तो भी हम जल जाते हैं, क्यों खुश गुमरा। वैसे जी क्यों है यार ये मैंने बात नोट की, आप भी नोट करना, फेसबुक पे कोई अगर अपनी खुशी से कोई चीज वो तस्वीरें भेज रहा है लगा रहा है, नीचे आप कमेंट देखें, मेजोरिटी लोगों की हटी हुई होती है। नहीं क्या करो यार, खुश रहा करो यार दूसरों की खुशी में। हम बात नोट करना यार, खूबसूरत कोई नजर आ रहा होगा या अच्छा नजर आ रहा होगा, नीचे कोई जरूर आड़ा तिरछा मैसेज करके गया होगा, बड़ा शौखा चल रहा है भाई तू, खुश रहने दो यार। वैसे कौम में हम उदास ही हैं, किसी को खुश देख ही नहीं पा रहे। महजबीन आ गई हैं इस्लामाबाद से, महजबीन इस्लामाबाद में ही हो या कराची में। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एंड ऑल लिसनर्स। वालेकुम सलाम सबकी जानिब से। अच्छा भाई, अब जरा दुखी दिलों की बात मैं कर रहा हूँ तो एक और गाना मुझे याद आ गया यार, इकबाल बानो मेरी बड़ी फेवरेट सिंगर है और स्पेशली इनका ये ट्रैक

राइट जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस किए चार स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। और संजीदा जी खुश होती हैं, यार क्या शायरी है सच्ची। चलिए जनाब, पुराने वक्तों की शायरी तो फिर कमाल होती थी। और मिसेज गफार सुन रही है, बहुत तारीफ कर रही है, सलाम दुआ भी कर रही है। मिसेज गफार, क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके प्यार आपकी मोहब्बत का। बेहतरीन सॉन्ग प्ले कर रहे हैं और कह रही मुझे भी बहुत पसंद है सॉन्ग। और आपका शो हमेशा डिफरेंट ही होता है मिसेस फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। आप तो वैसे ही अप्रिशिएट करती रहती हैं और हौसला बढ़ाती रहती हैं और एनर्जी आ जाती है। अच्छा जनाब, और कौन? हुमा सिद्दीकी के मैसेज आ गए हैं यार, सैड सॉन्ग अच्छे तो बहुत लग रहे हैं, पता नहीं क्यों हंसी बहुत आ रही है। संजू और मुझको, हम व्हाट्सएप पर लगे हैं, हंसी आ रही है। शीशा सामने से हटा लें हुमा जी, शीशे को सामने से हटा लें, जैसी नजर आपकी अपने पे पड़ती होगी तो हंसी आती होगी आपको। अच्छा जनाब, फुप्पा अगर हमें सुन रहे, फुप्पा जी कहाँ हो, किधर हो? स्पेशली ये ट्रैक फुप्पा को हम डेडिकेट करते हैं।

भाई जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 अयाज अहमद के साथ और मेरी प्यारी सी चाची, इनके लिए तो ढेरों दुआएं, बस अल्लाह ताला इनको खुश रखे भाई, इनके लिए बहुत सारी दुआएं करें कि चाची मेरी खुश रहे, बिल्कुल उदास ना हो। और जनाब संजीता जी कह रही है दिल चाह रहा है बहुत तंग करें, करें करें आप, मैं तंग होता ही नहीं, मैं तो ढीड आदमी हूं। और अहमद जुजदी का जो सॉन्ग है इनको पसंद आ गया, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जनाब इसके अलावा और बहुत ज्यादा क्यूशीट बहुत ही जबरदस्त बनी हुई, कुछ ऐसे गाने भी हैं जो मैंने नहीं सुने इतने लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगे, तो आज मैंने क्यूशीट में उनको भी शामिल किया है, जरा चेक करें। पहली दफा मैंने सुना ये गाना, मुझे अच्छा लगा।

जनाब सत्तार भाई थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल मसला और सत्तार भाई दौड़ते हुए आ गए। सत्तार भाई तुसी छा गए हो, मैं क्या बस जनाब लाइव ट्रांसमिशन में ये सारी चीजें होती है। पुप्पा मेरे साथ थे थोड़ी देर पहले, पुप्पा जी आ जाइए। पुप्पा बड़े प्यार से जो है ना अहमद जुदी के गाने सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। पीर एम इलियास कह रहे हैं अयाज भाई थोड़े से हैप्पी मोड की तरफ भी आ जाओ। ग्रेट अयाज भाई सरकार में आ रहा हूँ, मैंने कौन से भंगड़े डालने, मूड जो है वो चलते रहते हैं, हैप्पी भी सैड भी।

0: अच्छा जनाब, आज मैं जरा सा क्योंकि बड़े दिनों से फुप्पा की आवाज जरा ऑनर नहीं हुई, तो आज मैं सोच रहा हूँ जरा फुप्पा को भी ऑनर करते हैं। फुप्पा सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम सलाम। जीते रहे, खुश रहे, आपने वाकई दिल को मोह लिया है।
0: अल्लाह नहीं करो, मैं शर्मा रहा हूँ फुप्पा, नहीं करो इतनी तारीफ, नहीं क्या करो। कैसे हैं आप?
1: आपका और मुश्ताक मंगल साहब दोनों का, आपका और मुश्ताक मंगल साहब के क्या बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे।
0: कहाँ गायब है, कहाँ गायब है, क्या कर रहे हैं? आवाज आज सुनी तो मुझे मजा आ गया सुन के, फरमाइए।
1: अरे सर, वो गाना वही भारतीय फिल्म थी जब जब फूल खिले, जो आपने लाहौर एयर किया था, शानदार गाना था।
0: चलिए, पसंद आया आपको।
1: इंसानियत का जो गाना आपने सुना है, वो जो माला की आवाज में चलाया आपने, वो वही भारतीय फिल्म थी, इंसानियत, क्या शानदार गाना है वो।
0: देखो यार, पहले फिल्मों के नाम देखो, कहानियां देखो, इंसानियत, इंसान, ये वो। अब तो अजीब अजीब नाम है यार, नाम ही अजीब है।
1: अरे जी आज भाई, वो जो एरा था ना शुरू का, जब पाकिस्तान बना था, वो बड़ा अहम एरा था, बहुत 24-25 साल जो थे ना, क्या फिल्में बनी है उस दौर में
0: सर। बाकी में कुछ सीखा आपने उससे कि नहीं, उन फिल्मों से?
1: मैं इन्हीं बातों की वजह से तो मैं दोबारा कॉल किया आपको, खुशी, थैंक यू आपने मुझे मौका दिया दोबारा कॉल करने का।
0: अच्छा मुश्ताक, मुश्ताक भाई और भी गाने आपको डेडिकेट करने हैं। चले पप्पा, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज।
1: आप भी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह
0: हाफिज भाई जनाब। और ऐसा लग रहा है कि वापस फोन जो है वो ठीक हो गए, लेकिन पप्पा से भी प्यार है और आप सबसे प्यार, ऐसी बात नहीं। मुश्ताक मंगल कहने यार ज्यादा बहुत दुखी सॉन्ग आपने पप्पा को डेडिकेट कर दिया। अबे कोई बात नहीं, तो पप्पा खुश चल रहा है, मिक्सिंग की है मैंने, थोड़ी दुख भी बीच में डाला ताकि बैलेंस हो जाए। इतना खुश भी पप्पा को नहीं मैं देखना चाह रहा, जैसे कि मैंने पहले बताया, पाकिस्तानी कौम किसी को खुश देख ले ऐसा नहीं हो सकता। खाली मजाक से कह रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो खुश देखते हैं। एक और जरा, अच्छा ये 50s के दौर का गाना लग रहा है मुझे, मजा आ रहा है जरा पुराने, बिल्कुल ये है सही क्लासिक।

भाई जना वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी गया। सुदीन बलबल मुल्तान से तशरीफ ले आए हैं, कैसे हैं? पूरी टीम को सलाम दे दिया। वालेकुम सलाम गयास, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से है। संजीदा जी कह रही टाइम भाग रहा, बिल्कुल ऐसा ही है, दौड़े जा रहा टाइम। आए हुमा सिद्दीकी क्या बात है, कह रही हमें तलाश थी जिसकी, वो आरजे अयाज आप हो। अरना नहीं करो, नहीं करो, सो स्वीट ऑफ यू हुमा जी, बस स्वीट हैं आप, खुश रहे आप। आए मेरी प्यारी सी चाची मुझे सुन रही होती हैं, चाची बस खुश रहे। चाची, चाची की भी आवाज सुने काफी दिन हो गए वैसे। और मिसेस फारूक आ गई है, क्लासिक क्लासिक शो, बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। अच्छा क्लासिक की अगर आप बात कर रहे हैं ना, एक और क्लासिक 50s के दौर का ये भी मुझे ट्रैक लगता है, पता है, चेक करें जरा, थोड़ा सा स्लो ट्रैक।

0: क्या गाना है ये, क्या दुख है इस गाने में। और चाची को सलाम भेज दिया है मिसेस फारूक ने। मैं काम करता हूँ चाची को ही ऑन एयर, जरा हम चाची से बात करते हैं और चाची को ऑन एयर करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, केम चो दिख रहा
0: है। अरे क्या बात है चाची, आवाज सुनने को मैं तो तरस गया था आपकी।
1: अच्छा, इसलिए तो कहते हैं वो जिस चीज की शॉर्टेज होती है ना उसकी अहमियत बढ़ जाती है।
0: वाह वाह वाह वाह, तो आप यानी अहमियत जो है ना वो दिलाने की एहसास उसका, वाह वाह बेहतरीन।
1: ठीक है चीज हो
0: जनाब, फरमाइए।
1: शॉर्टेज हो ना कोई भी चीज हो तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहेंगी?
1: बस सुन रही थी शो और अभी वो इकबाल साहब की कॉल सुनी, सॉन्ग भी सुना। जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना,
0: जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना, जिंदगी से कितने करीब शायरी है ये।
1: उस जमाने के लोग भी जिंदगी से करीब थे, गोलीबाज नहीं तो सही है ना।
0: गोलीबाज सही कह रही, सही कह रही।
1: अभी जो है ना, अब जो जमाना है वो तू नहीं और सही, और नहीं और सही का जमाना है।
0: ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
1: पहले ऐसा जमाना नहीं था।
0: सही सही सही। अच्छा
1: अच्छे लगे सॉन्ग भी, अच्छे लगा रहे हो।
0: अच्छा इतने दिनों से चाची, चाची इतने दिनों से लोग आपको मिस कर रहे थे, आपकी आवाज को मिस कर रहे थे। चाची आपने भी मिस किया लोगों को, सारी फैमिली को कि नहीं?
1: अयाज में ये मैंने तो मिस किया सबको, लेकिन जिंदगी में ना वो 24 घंटे में एक वक्त ऐसा भी होता है जब इंसान अकेला ही होता
0: है। सही बात है, ये तो हकीकत है।
1: वो कोई जगह ना कोई नहीं ले सकता।
0: ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
1: समझे ना, और मतलब कहते ना कि अल्लाह की जात, माँ बाप और शोर अच्छा तो उसमें तेरा तो लगा है, उसके लिए कोई दुनिया में आपका नहीं है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जी चाची, अब जाते जाते क्या कहना पसंद करेंगे?
1: बस पसंद तो ये करूंगी, दो चार बातें करूंगी।
0: हाय हाय,
1: अगर इजाजत हो तुम्हारी,
0: जल्दी से टाइम जरा।
1: ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीन शॉट का जमाना है
0: जी, ऐसा ही है।
1: इसलिए अपनी बात और जज्बात को ना संभल कर बयान करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, व्यूज का दौर है, किसी तरीके से लाइक्स मिल जाए, व्यूज मिल जाए जी।
1: और पैसा कहता है मुझे पा लिया,
0: सही।
1: तो सब कुछ पा लिया,
0: ठीक हो
1: गया। वक्त क्या कहता है बताए?
0: जी जी,
1: वक्त कहता है कि मैं सही हूँ तो सब कुछ सही है, वक्त कहता है। कामयाबी कहती है कि मैं मिल गई तो किसी की जरूरत नहीं है, कामयाबी कहती है,
0: ठीक है।
1: मगर ये तीनों चीजें भी मिल जाए ना अयास, तो असल में इम्तिहान तभी शुरू होने लगता है जब ये तीन चीजें इंसान के पास नहीं होती।
0: क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त बात की आपने
1: ना।
0: बिल्कुल।
1: और अयास एक बात और कहूंगी कि आपको ना ये भी मतलब ये कि जो आपको नहीं समझते ना अयास
0: जी जी,
1: तो इनको समझाने की जरूरत भी नहीं है।
0: मैं टाइम ही नहीं इतना मेरे पास,
1: तो समंदर का पानी खा रहा है ना।
0: जी जी,
1: समंदर का पानी खा रहा है ना,
0: ऐसा ही है।
1: तो खा रहे रहने दे,
0: खा रहा रहने दे,
1: बिल्कुल। शक्कर डालेंगे तो वो मीठा नहीं होगा पानी,
0: बेहतरीन बात, उल्टा शक्कर ही जाया होगी।
1: और क्या,
0: ठीक है,
1: शक्कर जाया होगी, मीठा नहीं होने वाला,
0: वो नहीं होने वाला।
1: और हमेशा जो है ना अयास, हमेशा याद रखना कि भीड़ में ना सब लोग अच्छे नहीं होते।
0: सही,
1: बल्कि अच्छे लोगों की भीड़ होती नहीं है।
0: हाय हाय हाय हाय, जबरदस्त बात, जबरदस्त बात चाची।
1: अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती,
0: ठीक है।
1: तो मेरा लिए कि जो एक्सपीरियंस मुझे है ना, तभी आपको 20-25 बहुत टाइम लगेगा आपको वक्त के साथ साथ। अभी जो दिखता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और
0: ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रही चाची, बिल्कुल सही कह रही, ठीक है।
1: आप लोग जो है ना, ये उसमें और ये मतलब हम लोग जो है ना प्रैक्टिकल में, और हमने चमकती हुई चीज से इम्प्रेस नहीं होते हम लोग।
0: जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात।
1: चाहे वो वेस्ट फील्ड हो, चाहे वो लाइव बटन हो, चाहे वो एक्सवाइजेड कुछ भी, हम इम्प्रेस नहीं होते।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऐसी चीजों से
0: मैं तो इम्प्रेस मार्केट ही चले जाता हूँ। ठीक हो गया चाची, बस अपना ख्याल रखें।
1: बस आखिर ये मेरी नसीहत है सबको, ताले की तरह वफादार रहना, जैसे ताला वफादार होता है ना घर में, जो हम लॉक लगाते
0: हैं। कहाँ चाची, तोड़ के निकल जाते हैं लोग, ताले भी टूट रहे हैं
1: ना। हाँ, ताले की जगह हमेशा वफादार रहना चाहिए,
0: ठीक है।
1: टूट भी जाता ना मगर अपनी चाबी नहीं बदलता।
0: हाय हाय हाय हाय, ये तो बात है भाई, ये बात है। ठीक हो गया,
1: इसको खत्म करूंगा। सलाम टू ऑल पाकिस्तान, जिंदाबाद
0: पाकिस्तान, जिंदाबाद। क्यूट सी प्यारी सी मेरी चाची, बड़े दिनों बाद इनकी आवाज वो हमने सुनी, आज लग रहा है कम्प्लीट हुआ शो। क्या कहने चाची। अच्छा जनाब, एक और ट्रैक मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वैसे मैडम के बहुत सारे ट्रैक सुने होंगे, ये भी 50s के दौर का है। लेकिन जरा स्टाइल है इसका यार।

0: best of 90s, 80s, and today's with Ayaz Ahmed. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
0: And
2: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry Farm, Fish Farm, Zari Yalat aur Maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
3: Active. Yummy. Adorable. Seven. Babe, I've got a crush on you.
4: वेलकम बैक जना, आप सुन रहे हैं FM 100। अच्छा लगा चाची को सुनकर, मेरी दुआ है चाची के लिए। जरी नूर, बहुत शुक्रिया चाची की जानिब से। और मिसेस फारूक कह रही हूँ, फल्ला इतना सैड सॉन्ग, टिश्यू बॉक्स तो खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं चाची, कोई बात नहीं अपना मिसेस फारूक, कोई बात नहीं। दुखी गाने भी जो है ना, आज जरा मजा कर रहे हैं वैसे दुखी गाने, लेकिन बीच बीच में अच्छे फास्ट ट्रैक भी मैं प्ले कर रहा हूँ। लेकिन दुखी गाने जो है ना, वो छाए हुए। तानिया हसन कैसी हैं आप? तानिया जी भी आ गई हैं, सुन रही हैं वो भी। तानिया जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने किसी को सुनना शुरू किया, वरना तानिया ने किसी की नहीं सुनी, अपनी की है जो की है। जनाब, इखलाक अहमद का जिक्र हो रहा है तो क्या ख्याल है फिर?

जनाब। अच्छा इसमें भी भरम है फुल टाइम लगे? तू है नसीबों वाली, हमने तुझे प्यार किया तो फुल भरम में है फुल टाइम बाद में। प्यार ना हुआ एहसान हो गया कि एहसान कर रहा उसमें कि भाई हमने प्यार किया नसीबों वाली हो तो नहीं करो यार ऐसे, इस तरह का प्यार करना तो। अच्छा जनाब क्या खूबसूरत सॉन्ग आज के दौर का। अच्छा ये पिछला कोई गाना है उसकी तारीफ करनी है हुमा सिद्दीकी। हुमा जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब अस्सलाम वालेकुम, माय हीरो अयाज भाई कैसे आप। अगर इंसान को पहले से ही दर्द हो सर में, लोग ज्यादा बात करके दर्द को क्यों बढ़ा देते। बेटा पैनाडॉल की गोली खाओ और सो जाओ। तुम्हें भी बड़ा शौक है लोगों के दरमियान घुस के बैठने का, तबीयत खराब है गोली खा के साइड पे सो जा। नहीं बस बैठा हुआ है लोगों के दरमियान और फिर इस तरह की बात है तंजिया। ये हम लोग खुद हैं ऐसे, हर चीज का इलाज है हमारे पास, लेकिन नहीं जमाने को हमने करना है बस। मैं सही हूँ बाकी सारे गलत। सर में दर्द हो रहा है, बंदे की तबीयत खराब हो वैसी साइड पे हो जाता है। ये अपना बीच में बैठा हुआ तो प्रॉपर सर में दर्द हो, नहीं क्या करो ऐसे यार, खुद भी कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है यार। फिर कहते मैं ऐसी बातें करता हूँ। अच्छा जनाब और मैसेज कौन कर रहा भाई। वाकई अयाज मेहंदी हसन जी नहीं है क्या, मिस कर रहे हो उनकी आवाज। नहीं नहीं है वैसे मेहंदी हसन, ऐसा हो सकता है। चेक करने दे मुझे थोड़ा।

चल जब तक मैं ढूंढता हूँ एक और ट्रैक और रूना लैला जी को शामिल करते हैं। हाय हाय क्या बात है। एंजॉय करें मैसेजेस करें 3636 पर।

जनाब, जबरदस्त ट्रैक। और संजीदा जी बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया ट्रैक। और हुमा जी आपका भी शुक्रिया। जनाब मेहंदी हसन साहब की भी गाने की रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी देर में प्ले करता हूँ। वैसे तो हम नूर जहां और मेहंदी हसन के गाने तो बिल्कुल भूलते नहीं है, लेकिन आज जरा क्यू शीट जो है ना मैंने जरा दुखी बना दी थोड़ी, पता नहीं कैसे, लेकिन बीच में एक दो है लेकिन दुखी गाने ज्यादा है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा पुराने वक्तों में ना जरा दुख ज्यादा भी था। अच्छा ये भी बड़ा कमाल गाना।

क्या बात है जनाब, दुनिया किसी के प्यार में मोहब्बत पता नहीं क्या क्या या शायरी कैसे कर लेते हैं, मतलब ये हराम है। सीधे साधे लोग हैं, हमसे तो शायरी हराम है जो हुई हो। अच्छा जनाब, संजीदा जी ने इतनी कुछ सीरियस बात कर ली, मेरी कोई भी बात बुरी लगी तो दिल से माजरत नहीं करो, मैं दुखी हो जाता हूँ प्लीज। हाँ हाँ, इसी बात खूबसूरत सा गाना आज तो भाई क्या जबरदस्त बन के आए हैं नदीम भाई।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। मैसेजेस आपके आना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले कि हम मैसेजेस की जानिब बढ़े, क्यों ना सवाल कर लिया जाए, लेकिन सवाल से पहले थोड़ी सी चर्चा। भाई ये जब से फ्रंट कैमरा निकला है, टेढ़े आड़े मुंह करके हम लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं। जब दिल चाहता है तस्वीर खींच देते हैं, चाहे सामने वाले की चाहे अपनी। पहले तो जब कैमरेज होते थे तो हम डिपेंडेंट होते थे कोई भाई कोई बंदा हो, सामने कोई हो, दोस्त हो, जो कि जिसके हाथ में कैमरा हो वो हमारी तस्वीर खींचे। यानी कि समझ रहे ना। और जब फ्रंट कैमरा नहीं था तब भी ऐसा था कि मोबाइल दूसरे के हाथ में दे दिया, भाई यार तस्वीर तो खींचिए यार। लेकिन जब से फ्रंट कैमरा आ गया है तो सेल्फी स्टार्ट हो गई। सेल्फी क्या है यार, वाह वाह खुद से तस्वीर खींचना, यानी कि समझ रहे ना। तो सवाल आज का ये है कि दुनिया में वो कौन सा शहरी है, कौन सा मुल्क है जिसके शहरी ने सबसे पहले सेल्फी खींची थी। हैं जी, जी हैं जी, कितना आसान सा सवाल है यार। तस्वीरें हम खींचते रहते हैं, पर नाम याद रहेगा फिर आपको। हाँ भाई ये था भाई, इस मुल्क का था वो। तो ये छोटा सा सवाल जो कि आपकी सवालों तक पहुंचाया। और अब बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब। पीर मोहम्मद इलियास जौहर साहब कह रहे हैं, नदीम भाई मोस्ट वेलकम, आई होप योर गुड शो, वेरी गुड। एक गाने की फरमाइश कर दिया उन्होंने। यूसुफ भाई बापू से आगे हैं और कह रहे हैं कि एफएम की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी को, चाची को, अरूसा को, गुलबानों को, तमाम डॉक्टर्स को, इमरान भाई खिताब लाला, गफरान भाई और मेरे वालिद साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं यूसुफ भाई, ठीक ठाक हैं? ओके ठीक, ड्यूटी पर है भाई। मीर बादशाह जलबानी साहब कह रहे हैं, नदीम भाई कैसे हैं आप भाई? ओके ठीक भाई, बेहतरीन। और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप स्वीट लाला संजीदा, अभी मुश्क मानूर और तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। ये कह रही है एस गुल। और हमारी शहजादी बहना जरीन नूर भी आ गई हैं, कह रही है सलाम, कैसे हैं वाले साहब, कैसे हैं संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई अगर हो सके तो लाला के लिए कोई अच्छा सा पख्तू दबा किधर किस्म का संदरा लगा दो। एस गुल कह रही है लगा देंगे जनाब, लगा देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और सलाम के बाद कह रहे हैं, भाई उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, हो सके तो मेरा एक काम कीजिए, शाम का एक बहर मेरे नाम कीजिए। ये कह रहे हैं अब्दुल जब्बार गबौल साहब गडाप से,
1: हो सके तो मेरा एक काम करो।
0: और जनाब लवली भी आ गए हैं। लवली कह रहे हैं, नदीम भाई कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अयाज भाई, मीठी चाय नहीं पीते हैं वो, आप तरह क्यों नहीं बोलते हैं, मेरी तरह क्यों नहीं बोलते, क्यों बोलेंगे मैं मेरी तरह, वो अपने मुंह से बोलते, मैं अपने मुंह से बोलता हूँ, वो फीकी चाय पीते, मैं मीठी चाय पीता हूँ, बल्कि मैं ज्यादा मीठी चाय पीता हूँ। तो इस तरह तो होता है, इस तरह के मैसेजेस भाई बहुत सारे हैं आपके, तो क्यों ना आपको लेके जाया जाए मेरे फेवरेट गाने की जाने। ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, पिछले शो में भी चलाया था और अब फिर चलाऊंगा भाई। हेलो फड़ो फखर खान।

0: वेलकम बैक। चला हूँ अपनी राहों में गुम। ब्यूटीफुल ट्रैक, फखर अब्बास का ये ट्रैक आपने सुना एंड मुझे पसंद है तो मैंने चला दिया। हाँ जी हाँ जी। सवाल मैंने ये फ्लोट किया है कि आपने ये बताना है कि वो कौन सा मुल्क है जिसके शहरी ने सबसे पहले सेल्फी खींची थी। खींच मेरी फोटो और ये बताना है आपने 3636 पर। अस्सलामुअलैकुम अमीन भाई मेट्रोवेल से संजीदा सिस्टर को, छोटे भाई चार्ली का सलाम, संजीदा सिस्टर मोश्क महना समरीन को अली अब्बास का कोई सॉन्ग डेडिकेट करना से करने को बहुत खुश। अच्छा अली अब्बास को, बड़ी चार्ली को बड़ी खुशी होगी भाई अगर ये मैंने गाना डेडिकेट किया अली अब्बास का। अली अब्बास बहुत अच्छे सिंगर थे पाकिस्तान के और उन्होंने बहुत अच्छा गाया। सवाल का जवाब है दुनिया की सबसे पहली सेल्फी है जरी नूर। अच्छा मैं सवाल चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। ये जो मौजूदा स्मार्टफोन की सेल्फी है स्मार्टफोन से, उसके हवाले से सवाल है। वैसे तो कैमरा उल्टा करके आदमी सेल्फी खींच सकता है, उसको भी सेल्फी कहते हैं। लेकिन मेरी प्यारी सी बहना, जो मैं पूछ रहा हूँ ना जरीनूर, ये आपका मैसेज था जो कि मैंने पढ़ा और बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन भी आपने दी है, जो कि मैं जब सवाल का जवाब बताऊंगा तो आपने ये जो बताया है ये भी बताऊंगा, यानी कि समझ रही है ना। हाँ जी। और साहिबजादा साहब आ गए हैं। अच्छा इन्होंने चुटकुला भेज दिया। साहिबजादा साहब चुटकुला आपका बाद में पढ़ेंगे हम। आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं वो लिखा करें भाई, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अदीला मेरी प्यारी सी बहना भी आ गई हैं, कह रही हैं सलाम मेरे प्यारे भाई नदीम कैसे हैं। उम्मीद है कि कैसे हो आप। उमदा शो संजीदा आपी को सलाम और एक सॉन्ग। हैं जी ते हैं जी हो जाएगा जी। मोहन लाल आ गए हैं यूके से। सलाम के बाद कह रहे हैं नदीम भाई मैं पिछले 15 दिन से अपने शहर उमरकोट गया हुआ था इसलिए आपका प्रोग्राम सुन नहीं पाया और आपको बहुत मिस किया। हमने भी किया लेकिन अब मैं वापस आया हूं और अगले 90 डेज तक फिर से आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग ओके टेक रहेंगी। मेरे दोस्त फैजान फरजान कयानी और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्लीज प्ले एक गाने की फरमाइश भी नालो नाल। क्या बात है, फरमाइशों पर फरमाइश, इसी बात पर हम चलते हैं गाने की जानिब, मगर उससे पहले एक ब्रेक।
1: This program is brought to you by HPL Zari Banking के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, सराय आलात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
1: fm247365।
0: वेलकम बैक कहूंगा आप सबको। और अब जाएंगे जनाब एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब। एलो पढ़ो

0: This program is brought to you by HPL Zari Banking के पास है poultry farm, fish farm, सारा यालात और मवेशियों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत.
1: FM 100 like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

वेलकम बैक, हो सके तो मेरा एक काम करो। और जनाब अब बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब, जो कि बेतहाशा मोहब्बतों का इजहार किया हुआ है आपने मैसेजेस के थ्रू। और जरा स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ लास्ट मैसेज कौन सा पड़ा था भाई। और हमारी प्यारी सी जरीन नूर बहना ने कहा है कि संजू के नाम अच्छा सा सॉन्ग बिल्कुल होगा जनाब, अदिला की जानिब से भी और आपकी जानिब से भी। चार्ली कह रहे हैं जी सलाम एने भाई, शो ऑसम, बिंदास बोले तो जगास, स्वीट खटी नमकीन फैमिली को सलाम चटपटा सा। संजू बहना प्लस मुश्क को सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिएगा अली अब्बास का। यार अली अब्बास के गाना जो है ना चार्ली, मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा, तो लिहाजा कोई और सिंगर बता दो जिसका गाना मिल जाए, यानी कि समझ आए ना। सलाम सुनियो, सबसे पहले तो आप ये बताएं अब आपके तबीयत कैसा है। कल मैं इनामुल हक से मिलने मनोड़ा गया था, हम दोनों ने कहा कि यार आज नदीम भाई का शो नहीं आ रहा, चलें मालूम करते हैं। फिर हमने आपको कॉल की तो आपने बताया कि आपकी तबीयत खराब है, हमने आपके लिए दुआ भी की, अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमामीन। सलीम मेमन कह रहे हैं, सलीम मेमन भाई आपका और इनाम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत माजरत चाहता हूँ, तबीयत सही नहीं थी तो उस वक्त मैं आपसे बात भी नहीं कर सका था, तो इस तरह तो होता है ना इस तरह के कामों में। अच्छा जी, लवली कह रहे हैं काली काली मिर्ची में लाल मिर्ची न डाले, पेट खराब हो जाएगा। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात किया। नदीम भाई प्लीज मुझे और लोगों की तरह रहने दो, उसे अलग नहीं करो। साहिबजादा साहब, मैंने कब आपको अलग किया, आप ग्रेट हैं भाई, आपका चुटकुला जबरदस्त था, हमने पढ़ा, हो सकता है आगे मैसेज आया हो, काफी देर पहले पढ़ा था। अच्छा जी, सलाम के बाद कह रहे हैं नदीम भाई कैसे हैं आप, लाला मुश्को और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। ये कह रही हैं एच गुल, एच गुल भी आ गई हैं फिर। और मुश्क आपको कोई नहीं भूलेगा, जब भी शो शुरू होगा आपकी याद सबको आएगी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। और इसको निशान लगा दूं मैं इससे पहले कि गाने की जानिब जाऊं तो पता चल जाए, यानी कि समझ रहे हैं ना। अच्छा भाई, नौरीन बहना क्या कह रही हैं, बिल्कुल सही जवाब दे दिया। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। और नाइस सॉन्ग कहा है मेरी प्यारी सी बहना हलीमा पठान ने, और बिल्कुल आपने भी सही फरमाया है अयूब लाला दास खाना यार। अब लाला का मैसेज आ ही गया है तो क्यों ना हम एक गाने की जानिब जाएं, मौसम की मुनासिबत से गाना चलाएं। तो जनाब ये ट्रैक लाला की जानिब से सबा गुल को, मुश्क को, मानूर को, बिना गोल को और तमाम सुनने वालों को सलाम भी गाया उन्होंने। और ये गाना जनाब एलो फड़ो,

वेलकम बैक नरे बारान दे। बारान बारिश को कहते हैं, बारिश का मौसम है, चले ठंडी ठंडी हवा। और जनाब मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। हाँ जी, यहीं पर हमने, अच्छा भाई लवली ने एक और मैसेज किया है, पाकिस्तानी कॉमेडी ड्रामे जो है वो चलाए न्यू एपिसोड। लवली ब्रदर क्या हो गया आपको? अच्छा जी, रिजवान साहब जो है शो की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और कह रहे हैं कि उनकी वालिदा की कमर की हड्डी टूट गई है, अल्लाह अकबर, दुआ की दरख्वास्त की है। तो रिजवान भाई उनके लिए ढेरों सलामती की दुआएं हैं हम सब की जानिब से, कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और ये जो दर्द है ये जल्द अज जल्द फुर्र करके उड़ जाए, आमीन सुम आमीन। और साहबजादा कह रहे हैं कि हमारे एक रिश्तेदार थे असलम भाई, जिनकी तारिक रोड पर शॉप्स थी, और असलम भाई ने पहली बार बैंकॉक भाई जा था माल लेने को। एयर फ्रांस की सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी, इकोनॉमी क्लास में मेरी सीट पर, अच्छा अच्छा, एक खातून सो रही थी। एयर होस्टेस बोली डू नॉट वरी, मैं आपको क्लब क्लास में बिठा देती हूँ। दो ही लोग हैं इकोनॉमी की टिकट में क्लब क्लास के मजे लिए। जिंदगी का पहला सफर आज भी याद है, क्या बात है। जिंदगी का पहला सफर जब इंसान पहली मर्तबा ट्रेन में सफर करता है अपने होशो हवास में, वो कभी नहीं भूलता। इसी तरह पहली बार बस में सफर करे होशो आवाज में तो नहीं भूलता, और पहली बार बायर सफर करे तो वो भी इंसान नहीं भूलता। हमें भी याद है हमने जो पहला ट्रेवल किया था। और मुश्क से रौनक है शो में, आज उदासी वाला एसएमएस किया, मैं भी उदास हो गई हूँ, जरीन नूर कह रही है, सो स्वीट यार। आप ऐसे बात तो सही कह रही है, आप इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाए। जरीन आप भी दुआ कीजिए बहुत। और संजू के लिए सॉन्ग भूल गए? नहीं भूला भाई, उनके लिए गाना मौजूद है, अभी चला रहे हैं। अब मसला ये होता है मेरी प्यारी सी बहन जरीन नूर, कि माशाल्लाह से संजू जो है वो हर दिल अजीज है, हमारी भी हर दिल अजीज है, और आज वो गायब है। और क्यों गायब हैं? अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हमारी सबकी दुआएं हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि संजू जो हैं वो हर एक की हर दिल अजीज हैं। अब आपने एक ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा, हमारी प्यारी सी बहन अदीला ने एक ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा, अमीन ने ट्रैक डेडिकेट करने के लिए, मतलब बेतहाशा माशाल्लाह से डेडिकेशन हो रही है उनको। तो अगर मैं एक गाने में सबके नाम ले दूं तो भी नाराज हो जाते हैं आप सब। तो लिहाजा नाराज नहीं हूं, क्या करें, वक्त की कमी भी होती है। तो एक ट्रैक में मैं दो दो लोगों को शामिल करूंगा, तो प्लीज बुरा नहीं मनाइएगा। और अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, मैं सनम, एक गाना मेरी जानिब से लाला को पश्तो सॉन्ग। सनम बिल्कुल डेडिकेट कर देंगे लाला को, अभी लाला के लिए भी 2-3 डेडिकेशनें हैं, एक एस गुल की, एक एच गुल की, और एक सनम की आ गई है भाई। लाला जबरदस्त दे, आपकी तो एक ही में सबको डेडिकेट कर दिया, लेकिन आपने सनम का नाम नहीं लिया, अब लीजिएगा। सवाल का जवाब है सबसे पहली सेल्फी, ओके जरी नूर आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, थैंक यू मेरी बहन कि आप हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं। सीमा साइम आ गई हैं, हाय मेरी प्यारी सी बहना कैसी हो, कह रही है सलाम नदीम भाइयों, मैं मसरूफ थी इसीलिए आपका शो नहीं सुन पाई, आप शो में कॉल क्यों नहीं लेते हैं? एक अच्छा सा सॉन्ग समी को, इमरान भाई को, सलीम भाई को, संजू को, चाची को, हमें क्या लिखा हुआ है, अरूसा को, नौरीन तौसीफ को, अयूब लाला को, इनको डेडिकेट कर दीजिएगा मेरी प्यारी सी बहना। आप अपने शो के पुराने चावल को भूल गए थे? नहीं नहीं, मुझे अभी इत्तफाक ऐसा है कि मुश्का मैसेज इतना प्यारा सा आया था, काफी उदासी वाला था, मैं मगर उदासी जाहिर नहीं कर रहा, तो उसमें यही जिक्र हो रहा था कि पुराने चावल कोई नहीं भूला हूं।
और चार्ली कहने नदीम भाई, हो सके तो मेरा एक डेडिकेट संजीदा सिस्टर और मुश्क बहना के नाम करो। अली अब्बास का मुश्क बहना वापसी जल्दी आना, आपकी याद बहुत आएगी। चार्ली कह रहे हैं, अब आप लोगों के मैसेजेस माशाल्लाह माशाल्लाह बेतहाशा है। तो अभी हम लेकर चलते हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे प्यारी सी बहना मेरी, शहजादी बहना जो है वो जरीन नूर और अदीला की जानिब से। दोनों ने नाराज नहीं होना, अब दोनों की जानिब से कर रहा हूँ। संजू को और भी गाने डेडिकेट होने हैं, तो ये संजू आपके लिए है। गोगे पता नहीं आप सुन रही हैं नहीं सुन रही हैं, तो आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ट्रैक।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियों काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। उम्मीद करता हूं कि ट्रैक पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपके चाहे स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। मेरा नाम है नदीम अख्तर, म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। हमारे इनामुल हक भाई आ गए हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं और आपकी तबीयत कैसी? आंटी को, चाची को और तमाम सुनने वालों को उन्होंने प्यार भरा सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई मुझ कहाँ जा रही हैं? मुझ के कुछ पेपर्स वगैरह का सिलसिलाकार है तो वो पढ़ाई में मसरूफ हो जाएंगी, तो ये कह रही थी कि जरा कम आएंगी, यानी कि समझ रही है ना। लेकिन हम उनको छोड़ेंगे नहीं, हम जब भी मुश्क आपको वक्त मिले ना तो बस आपने आना है, यानी कि समझ रही है ना। अच्छा भाई, लवली कह रहे हैं कि शक करने वाली खवातीन जो हैं, बीवियां खसूसी तौर पर, उनके सामने अगर शौहर अच्छे कपड़े पहन ले तो कहती हैं जरूर तुम्हारा चक्कर चल रहा होगा, और अगर नॉर्मल रहे तो कहती हैं कि किसका गम खाया जा रहा है तुम्हें, इंसान कहाँ जाए। लवली ब्रदर, अपने दिल का हाल लिख रहे हो तुम लगता है। कोई भी एक धमाकेदार सॉन्ग इनामुल हक और आपके छोटे भाई नवीद और मेरे दोस्त हुज़ैफ़ा के लिए चला दीजिएगा। यार अब आप लोगों के या मैसेज पढ़ूं या मैं गाने चलाऊं, माशाल्लाह से आप लोगों के मैसेजेस इतने होते हैं कि गाने भी फिर कम चलते हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना। हाय हाय, चांद का बंटवारा तो तुमसे हो नहीं पाएगा, चलो आज से चांद तुम्हारा और तुम हमारे हुए। हाय अल्लाह जी, आज नरीन बैना बड़े जबरदस्त जबरदस्त से अशार भेज रही है, क्या बात है। स्वीट लाला को थैंक्स सॉन्ग के लिए हिना गुल कह रही है। और नदीम भाई, ना बारान है ना जानान है सॉन्ग चला था, थैंक्स। एस गुल कह रही है और शो बहुत अच्छा है, आपके बातें भी बहुत अच्छी हैं, सो नाइस है। हिना गुल कह रही है जीती रहो मुस्कुराती रहो, जिंदगी साथ है आपकी आवाज में, समझ रहे हैं अगर हो सके तो जिंदगी बिल्कुल होगा। और नदीम मेरे आइडियल थे इल्म का खजाना उबैदुल्ला बेग साहब, मरहूम कसोटी वाले, अबैदुल्ला बेग साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब, ये दोनों की जोड़ी होती थी और साथ में होते थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी, आ जाएगा आ जाएगा। मेजबान जो होते थे, जिनके साथ मेहमान बैठे होते थे, और क्या प्रोग्राम था साहबजादा साहब, क्या क्या यादें दिला देते हैं आप, वाह वाह। जरीन नूर मेरी बहना सॉन्ग के लिए थैंक्स कह रही है, और सॉन्ग बड़ा पसंद आ रहा है भाई किसी को, और उन्होंने नाम नहीं लिखा है तो अब क्यों ना गाने की जानिब ही जाया जाए। बड़े तेज तेज किस्म के गाने मैंने रखे हुए थे, लेकिन खैर अभी जो है हम जो ट्रैक चला रहे हैं ना भाई, ये हमारे मोहनलाल यूके वाले जो हैं उनकी फरमाइश पर एक गाना चला रहे हैं, एलो फड़ो।

0: we'll come back.
1: Be gone.
0: जनाब उम्मीद करता हूँ कि ट्रैक पसंद आया होगा. अब जल्दी जल्दी से पूरे पूरे मैसेजेस वगैरह मैं ना पढ़ सकूँ तो डोंट माइंड. और अमीन भाई कह रहे हैं भाई आज तो नौरीन सिस्टर बिजली से पहले आ गई और संजीदा सिस्टर की बिजली नहीं होगी. ये दोनों प्यारी बहनें बिजली पे चलती हैं. कह रहे हैं डोंट माइंड. मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है भाई, मजाक नहीं भाई. उनका नाम था कुरैशपुर. बिल्कुल सही बताया आपने. क्या बात है भाई साहबजादा साहब. मैं आपको भाई लिख रहा हूँ. आप खाली नदीम रिएक्ट कर रहे हो. अरे नदीम भाई कह रहे हैं आप. भाई भाई सही, कोई मसला नहीं है. भाई कह रहे हैं हम साहबजादा साहब. यानी कि समझ रहे हैं ना आप. हाँ नरीन मैंने कहती है सीमा साहब को भी मेरी तरफ से सलाम और ढेरों सलामती की दुआएं. और आपका गाना चल जाएगा. वो वाला नहीं चलेगा जो आपने कहा है. वो कंटेंट जो है वो हिंदुस्तानी है. हाय नामोला कह रहे हैं नदीम भाई लाइव नहीं आते. ना करो यार, आज नहीं फिर कभी. और बिजली अचानक चली गई जिसकी वजह से नेट बंद हो गया, जिसकी वजह से ये मालूम नहीं हो सका कि मेरा मैसेज शामिल हुआ कि नहीं. भाई मैसेज भी शामिल हुआ और गाना भी शामिल हुआ. तो अब हम क्या कर सकते हैं अलीमुद्दीन साहब, बताइएगा जरा. और फौरन से बेशतर अब आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब. और ये ट्रैक जनाब हम नौरीन की जानिब से डेडिकेट करेंगे संजू को. और उसके साथ ही साथ हमारे अमीन चार्ली की जानिब से भी संजू को. और उसके साथ ही साथ मुश्को भी अमीन चार्ली की जानिब से. लेकिन नौरीन बहना ये आपकी जानिब से भी है. तो संजू एलो फड़ो.

वेलकम बैक, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको भी पसंद आया होगा। मैसेजेस आपके आ रहे हैं, शुक्रन शुक्रन नौरीन भैना ने कहा गाना अच्छा लगा, ये भी बताइएगा। अरे भाई, हमारे सलीम मोहन साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने फूलों का हार मंगवाते हुए मंगवा लिया, तो मरीज ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये ये ये ये फूलों का हार किस लिए? डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बेसिकली मेरा पहला ऑपरेशन है, तो अगर मैंने ऑपरेशन कामयाब किया तो ये मेरे लिए, और अगर नाकाम हुआ तो यानी कि समझ रहे ना आप। और लंदन सिटी के बीच में से एक दरिया गुजरता है जो लंदन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ईस्ट लंदन और वेस्ट लंदन। दरिया का नाम है हामिस। साहबजादा साहब कितनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं आप, वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया यार। इस बात पर आप, आपके लिए ना एक गाना होना चाहिए पक्का पक्का। लेकिन अभी फिलहाल हम जो जिस ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे भाई हमारे छोटे भाई जो है नवीद साहब, और उसके साथ ही साथ क्या नाम था यार, मैं जरा नाम भूल गया हूं, इनाम उल हक साहब को और छोटे भाई नवीद साहब को, और एक हमारे एमपी के जो है फरजंद जो कि हमें सुनते रहते हैं, एमपीए के फरजंद हैं हुज़ैफा, तो इन सबको गाना जो है सलीम मेमन ने कहा था धमाकेदार होना चाहिए, तो धमाकेदार गाना हेलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो। अच्छा जनाब, वक्त तेजी से गुजर रहा है तो मैं फौरन से बेशतर सवाल के जवाब की जानिब भी आ जाऊं, वरना सब कहेंगे कि भाई जवाब दिए ही नहीं यार। सवाल मैंने आपसे ये किया था कि पहली सेल्फी जो है किस मुल्क के शहरी ने ली थी। जाहिर है किसी इंसान ने ही ली होगी और वो किसी ना किसी मुल्क से उसका ताल्लुक हो। सवाल ये था कि किस मुल्क के शहरी ने सबसे पहले सेल्फी ली थी। तो आपने सिर्फ मुल्क का नाम बताना था और बेहतरीन जो है वो डिटेल के साथ मेरे पास सबके जवाब आए और तकरीबन दुरुस्त जवाब आए। तो जनाब वो मुल्क था अमेरिका और उर्दू में अमरीका। यानी कि समझ रहे ना, ये सवाल का जवाब जो है वो आप लोगों तक पहुंचा भी दिया है। और अब जो है फौरन से पेशतर, क्योंकि वक्त बड़ा महदूद सा रह गया है, एक गाने की जानिब जा रहे हैं जनाब। ये ट्रैक जो है हमने डेडिकेट करना है सबा गुल की जानिब से, है ना, गुल की जानिब से, सनम की जानिब से। अय्यूब लाला आपके लिए ये गाना है, जरा गौर से सुनो।

वाओ जी, वेलकम बैक कहेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये ट्रैक आप लोगों को पसंद आया होगा। अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। एक और फरमाइश आई थी मुझे और वो फरमाइश थी जनाब जिंदगी की, और जिंदगी हमेशा फरमाइश करती है कि कुछ अपनी आवाज में हो जाए तो क्या बात है। थोड़ा सा सुनाएंगे।

कहेंगे सुने और अब आपसे चाहेंगे इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। और बड़ी तारीफें आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। एस गुल ने भी भेजा है मैसेज और साहबजादा का भी मैसेज आया है। मुश्क जीती रहो, मुस्कुराती रहो, शाद रहो, आबाद रहो। अलीमुद्दीन साहब का भी मैसेज आया। अयूब लाला के भी मैसेजेस आए हैं। लाला जिगर सबागुल सदम और हिनागुल का याद करने का शुक्रिया। थैंक यू नदीम भाई। और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे संजू को। बेतहाशा ही गाने आज डेडिकेट हुआ, आज वो आए भी नहीं है। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।

0: Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: ओ यारा मुश्किल है जीना तेरे बिना, ओ यारा मुश्किल है जीना तेरे बिना। क्या जबरदस्त सा ट्रैक है ना, बड़ा जबरदस्त ट्रैक है ये। कुछ ट्रैक आज आप मेरे प्रोग्राम में आज नए नए से ट्रैक सुनेंगे, नए से बुरा दी हैं, उस दौर के कैसेट्स के दौर के ट्रैक हैं ये, अभी के नहीं, मगर प्रोग्राम में पहली बार प्ले कर रहा हूँ इसलिए आपको

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: जी जनाब, आंखों ही आंखों में प्यार हो गया है ना, दिलिए मेरा बेकरार हो गया।

जी, ये आवाज थी बनी की, बनी बनी बनी बनी, और पसंद थी जनाब समरीन बलोच की। तो समरीन, आपने यकीनन सुन लिया होगा अपनी खूबसूरती आवाज को। और जनाब हमीद कुल साहब की कहने लगे, कहने जनाब मेरे गांव में बिजली आई है। कभी ये सुना करते थे, वाकई बचपन में सुना करते थे कहीं, ओह भाई मेरे गांव में बिजली आई है, हमारे यहाँ बिजली आ गई है, हमारे वहां बिजली आ गई। अब तो पूरे पाकिस्तान में एक वक्त हो गया बिजली आई है, और बिजली आई है, आई है, बिजली आई है ना। और जनाब उसके बाद खुर्रम सलीम हमें ज्वाइन कर चुके, कहते हैं सलाम शोभी भाई, कैसे हैं आप? सभी सुनने वालों को सलाम, चले वालेकुम सलाम सर, सबकी जानिब से भी और मेरी जानिब से भी। और कहते बेकरारी क्यों हो रही है? पता नहीं क्यों हो रही है, कोई वजह तो होगी बेकरारी की, थोड़ा सा पता चलाएं जब तक हम फैसल लतीफ को बुलाते। और उसके बाद फिर कहते हैं जनाब, क्या कहते हैं कि ना मैं जानू ना तू जाने। आतिफ असलम, क्या बात है जी, अब आतिफ असलम को बुलाना पड़ेगा, किसी एक को बुलाएंगे, देखेंगे कोई एक देखते हैं। और उसके बाद जनाब फिर हमीद गुल साहब भी कहने ने, हाय हाय अताउल्ला का सॉन्ग है, इसे गड्डी ते आ जाए, सॉन्ग है जनाब माटे इसी गड्डी ते आ जाए। कौन सा ये समझ में नहीं आया, कौन सा सॉन्ग है ये? हमीद साहब जरा से मुझे वाजे करके बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा गड्डी ते आ जाए केड़ा सॉन्ग है, मेरी समझ नहीं आया, तुसी दसो, सही दसो केड़ा सॉन्ग है, ता ही पता चलना है। और जब तक हम यूं करते हैं कि आ जाते हैं अपने एक ये ट्रैक, और ये ट्रैक हम जो शामिल कर रहे हैं ये जनाब ये पसंद है तानिया हसन की। तो तानिया हसन आपको डेडिकेट कर दें आपकी पसंद का ट्रैक।

जी जनाब, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंद आई श्री वाली अफ्रीकी दाई में मेरा लौंग बाचा। अब इना इनका लौंग तो गुम हो गया भाई, अब ढूंढते रहो, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम बैठ के इनका लौंग ढूंढेंगे। और वक्त जो है वो बड़ी तेजी से गुजर रहा है और प्रोग्राम के इख्तिताम में 10 मिनट रह गए, 12 मिनट। तो मैं सोचे एक और आवाज, बल्कि खुर्रम सलीम ने दो तीन फरमाइशें हमें की, मगर उनमें से एक फरमाइश हम खुर्रम सलीम आपकी पूरी कर रहे हैं और वो है शफकत अमानत अली की आवाज में। क्या एक ये भी ट्रैक बड़ा क्लासिक ट्रैक है जो मैं शामिल करने लगा हूँ शफकत अमानत अली खान साहब की आवाज में।

0: साहब, आवाज आंख रो रो के तलब करती है रहमत तेरी,
1: अल्लाह
0: दिल धड़कता है तो आती है यही एक आवाज। आवाज समझ फरमाए, क्या आवाज़?